अल्लाह जे नाले सा जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ऐं वेड़ जी सेड़ जी सुम्हण वारा, राति जो निमाज़ में बीहंदो कर, सवाइ कंहिं थोरे वक़्त जे, राति जो अधु या इन मां कुझु घटि कर या इन में कुझु वधाए, ऐं क़ुरान खे ख़ूब ठाहे ठाहे पढ़। असां तो ते ॾाढो गरो कलाम नाज़िल करण वारा आहियूं।

बेशक असां वटि डंडा ॿेड़ियूं ऐं भड़कंदड़ बाह आहे ऐं निड़ीअ में अटकंदो खाधो ऐं दर्दनाक अज़ाब इहो उन ई ॾींहुं थींदो जॾहिं ज़मीन ऐं जबल धुॾण लॻंदा ऐं जबल ईअं थी वेंदा जो ॼण त वारीअ जा ढेर आहिनि जेके खिंडरी रहिया आहिनि।

तव्हां ॾे असां ईअं हिकड़ो रसूल तव्हां ते शाहिद करे मोकिलियो आहे जीअं असां फिरौन ॾे हिकड़ो रसूल मोकिलियो हो। पोइ फिरौन उन रसूल जी ॻाल्हि न मञी त असां खेसि सख़्तीअ सां पकड़ियो।

जेकॾहिं तव्हां मञण खां इनकार कंदो त उन ॾींहुं कीअं बची वेंदो जेको ॿारनि खे ॿुढो करे छॾींदो ऐं जंहिंजी सख़्तीअ खां आसमान पियो फाटंदो हूंदो। अल्लाह जो वाइदो त पूरो थी रहणो आहे।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस। जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसइलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हरा चर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312-1401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Har din, har peher, zindagi ki leher, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां

0: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Pakistan ki shaan, Wadi Mehran, Mehran ki pehchan, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: जेकरे तवा के मैदे जी तकलीफ है सीने जी जलन खट्टियों उगरायू भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन त हाणी परेशान थण जी जरूरत न आए इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312401287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बताए।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: कत्ल करने जो इनकशाफ नींगरी जो लाश हथ जवाबदार गिरफ्तार डोह जो इतराफ पुलिस मूजिब अंजुम मलवासी पंजन वरियन जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो वाक्यो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारीअ सां ज़्यादती तस्दीक थी जवाबदार कासिम कंडवाणीअ खे गिरफ़्तार कयो आहे जंहिं डोह जो इतराफ़ कयो आहे वधीक जांच करे रहिया आहियूं
5: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नओं रिकॉर्ड क़ाइमु करे वरितो पंजे ॾींहनि जो पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार पेट्रोल वधीक

इंसाफ जी वक्त सरफरामी जरूरी आए जिली अदालतों ने हाई कोर्ट्स में राबतन के भी बेहतर करण पवंदो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या आफरीदी है जिले अदालतों इंसाफ वाले निजाम में करंगे की हड्डी वाली हैसियत रखन थी। नौजवान जजेस बेहतर अंदाज में इंसाफ की फराम यकीनी बनाएं।

निशान हैदर मेजर शहीद राजा अजीज भट्टी जी एक अठी वर्सी सदर वजीर आजम एन तारा भेटा पेश सदर आसिफ गदारी पैंजे पैगाम में चयो तो शहीद मेजर राजा अजीज भट्टी वतन के दिफा में पैंजी जान दई छदी सदस कुर्बानी वतन की मिट्टी ए तकदस लाए रोशन मिसाल है।

आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहालीअ वारी तारीख़ दौरान शहादत माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। वारसन ऐं पीपी अगौणनि जी खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी शहीदनि खे भेटा पेश। पीपल्स पार्टीअ जे अॼु शाम केन शाह में जलसो बि थियलु।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे

0: जरिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257 86।
2: जी हां 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे, तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे, अखड़ियों मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे, तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे, अखड़ियों मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे, जडहिं ॾिसण जी मूं कई कोशिश लिकी वे, जडहिं ॾिसण जी मूं कई कोशिश लिकी वे, मुंहिंजो सुकून तूं ई फिटाए हलियो वे, तुंहिंजे हुस्न रमज़ खे समझी नथो सघां, तुंहिंजे हुस्न रमज़ खे समझी नथो सघां, मुर्की अखियूं अखियुनि सां मिलाए हलियो वे, तुंहिंजे हुस्न जो जलवो आ हूरन परिन मिसिल, तुंहिंजे हुस्न जो जलवो आ हूरन परिन मिसिल, महजूर जो ख़्याल मटाए हलियो वे। तव्हां ॿुधी रहियो जी एफ एम नेटवर्क ऐं प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती। प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण। मुंहिंजा मिठा साईं, कहिड़ा हाल आहिनि अवांजा? ठीकु आहियो त बि सही आहे अवां जी उमेद। अला ताला तव्हां सभिनी मुंहिंजनि भाउरनि ऐं भेनरुनि आख़िर ख़ैरियत कई हूंदी। असांजी दुआऊं तव्हां सां हर वक़्त ऐं हर हंधु गॾु गॾु हूंदियूं आहिनि। अला ताला तव्हां खे सदाई ख़ुशि ऐं आबाद रखे, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं ॾिसो, सदाई खिलंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं ऑनियर कयो वेंदो आहे, पर शेड्यूल तब्दील थियण जे करे हाणे तव्हां प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ॿुधी सघंदा। ऐं हीउ हफ़्तेवार प्रोग्राम आहे, हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो थींदो आहे, जेको पहिरियां जुमे जे ॾींहुं थींदो हुयो, हाणे छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां 1 वॻे ताईं हीउ ऑनियर कयो वेंदो। हिन प्रोग्राम में छा हूंदो आहे? हिन प्रोग्राम में हूंदो आहे तव्हां सां मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, उन खां अलावा तव्हांजा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस, ऐं उन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी, जेका तव्हांखे दिलि फरेब मौसीकी लॻंदी आहे। अॼोकी प्रोग्राम में बि सेम ईअं ई आहे, तमामु बहितरीन मौसीकी आहे, ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा त उनखे 4 चंड लॻी वेंदा। तव्हांजो मैसेज असांजे प्रोग्राम जी सूंह हूंदो, ऐं मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस, ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते।

वञा बेठा साईं असां सां न सिर्फ़ मोरो वारा बल्कि पूरे नेटवर्क जा समूरा जेके लिसनर्स आहिनि उहे कॾहिं सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ासि मोरो मटियारी मातली सकरंड ऐं मेरापुर वारा बि प्यारा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मूंखे यादि आहे त मुंहिंजो जेको जुमे वारो शो हूंदो हुयो हुन में तकरीबन सभिनी स्टेशनुनि तां मैसेज ईंदा हुआ, पर जेको अॼु ई मुंहिंजो पहिरियों शो आहे ॾिसूं था त जेको 11 वॻे खां 1 वॻे ताईं छंछरु जे ॾींहुं हाणे थींदो त ॾिसूं था उन में उहे जेके मुंहिंजा जुमे वारा लिसनर्स आहिनि छा उहे मैसेज करे मूंखे ॿुधाइनि था त भाउ असां अञा थोरी ॿुधूं पिया था। ऐं जेके रेडियो जा असांजा पुराणा लिसनर्स आहिनि जेके सदाई असां सां जुड़ियल रहंदा आहिनि त उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो स्पेशल प्रोग्राम आहे, उन्हनि जी पसंदि जो प्रोग्राम आहे, उन्हनि जी पसंदि जी हिन में मौसीकी हूंदी, उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल हूंदी। ऐं उन खां अलावा हिन प्रोग्राम में ईंदड़ जेके असांजा शो थींदा उन में मां कोशिशि कंदो आहियां, हिकु त लाइव कॉल खां यकीन कयो मां ख़ुदि हिन खे अवॉइड कंदो आहियां त लाइव कॉल न कयां, दोस्तनि सां मैसेजनि ते कचहरी कयां, पर ईंदड़ वक़्त में अगरि ज़रूरत महसूसु थी त तव्हांजी हिन शो में लाइव कॉल बि कयो वेंदो, पर अॼु लाइव कॉल न आहे, अॼु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मैसेज आहे। त मैसेज करण जो तरीक़ेकार हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां ॿुधायां थो त पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1 ते।

अधिका कंहिं जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं अवां जूं सुंदर समातूं त मुंहिंजा मिठा साईं दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उनखे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं। घोठ दूरो खान भेण खां शौकत अली भेण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, वॾी महिरबानी अदा शौकत। तव्हांजो मैसेज मुंहिंजे प्रोग्राम जुमे वारे में बि ईंदो आहे ऐं छंछर वारे प्रोग्राम में बि आयो आहे, तंहिंजो मतिलबु तव्हां जीअं FM 88 नेटवर्क जा रेग्यूलर लिसनर आहियो। महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। नादिर अली भेण खे उन सां गॾु आहे, अली गुल भेण उन सां गॾु आहे, ऐं चवनि था अदा आपका शो बहुत अच्छा है। ऐं मास्टर मंज़ूर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, मास्टर मंज़ूर जो कलाम बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं उन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे मोरो शहर जे कलोड़ा कॉलोनी खां फैज़ान अली कलोड़ो। ऐं फैज़ान चवे थो त सर तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे, ऐं वॾी महिरबानी फैज़ान साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, उनजे लाइ खोड़ सारियूं मोहबतूं ऐं खोड़ सारो प्यार तव्हांजो, ऐं तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो। त अहिड़े ई तरीक़े सां ॿिया बि दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि, उन्हनि खे बि शामिल कंदासीं, पर वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, त हलंदासीं शॉर्ट ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मैसेज ऐं अव्हां खे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

प्रोग्रामिंग दोस्तों जो मैसेज भी शामिल कंदा हलूं असां सां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो अदा फौजी पठाण कहिड़ा हाल अथई ठीकु आहे भाउ तबियत सही अथई अदा फौजी खान चवे थो अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद सदा मौजूद ऐं वालेकुम सलाम भाउ मुंहिंजा अदा चवे थो अदा गुलाब खान कहिड़ा हाल आहिनि भाउ मुंहिंजा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हां कीअं आहियो तव्हांजा कहिड़ा हाल आहिनि ऐं उमेद आहे त अलाह ताला तव्हांजे ख़ैरियत कई हूंदी ऐं अदा जन चवनि था प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे लख महिरबानी ऐं आर जे लैला जे बारे में पुछी रहिया आहियां त चवांसि थो अदा आर जे लैला पंहिंजे ज़ाती मसरूफ़ियातुनि सबबि फिल वक़्त GFM 88 मोरो ते शो न पई करे ऐं इनशा ताला जीअं ई उहा मसरूफ़ियात खां फारिग थी वेंदी त वरी अची वेंदी ऐं हुन जो आवाज़ तव्हां ॿुधी सघंदा ॻोठ गुलाब लगारी शहर आहे गुलाब लगारी ऐं हुन जो ॻोठु आहे बिशाम खान रिंद खां केर थो असां सां गॾु आहे शायर गाज़ी खान रिंद ऐं हुन सां गॾु फैज़ान अली रिंद शहज़ाद अली रिंद रिज़वान अली रिंद ऐं नंढड़ो आहे कोनेन ज़ोरा चओ था आपके शो में पहली मरतबा शामिल हो रहे हैं ठीकु आहे अदा महिरबानी तव्हांजी ऐं चवंदा अस्सलाम वालेकुम त वालेकुम अस्सलाम भाउ मुंहिंजा अदा गाज़ी खान तव्हांखे मां पंहिंजे हिन शो में स्पेशली भली कार चवां थो

अदा जन फरमाइश कई है त असांखे खुशबू लगारी जो कलाम बुधायो त हाज़िर बाबा खुशबू लगारी जो कलाम तव्हांखे ज़रूर ॿुधाईंदासीं असां सां गॾु आहे झुलरीअ खां ख़ालिक लाशारी ऐं चवंदा शो VIP आहे फरज़ाना परवीन जो आवाज़ बि अदा जन खे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे ऐं डेडिकेट कनि था शिकारी

अदा जेको तव्हां लिखियो आहे न भाउ मुंहिंजा, मूंखे सचमुच इहो समुझ में कोन पियो अचे ऐं ॿीहर लिखो त सुठे तरीक़े सां करे लिखजोसि ऐं जंहिंखे तव्हां डेडिकेट कयो आहे ऐं शहज़ाद अली जमाली ॻोठ सईद ख़ान जमाली खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो मातलीअ खां। वाह साईं वाह, मातलीअ वारा भाउ, स्पेशली मां तव्हांखे भलीकार चवां थो ऐं ॿिया जेके बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहिनि सभिनी खे भलीकार चऊं था। त शो में शामिल कयूं था शमल अली मीराल जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे ऐं उन खां पोइ वरी ख़ुशबू लिकारी जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाइबो। त अछो इंजॉय कयूं शमल अली मीराल जे कलाम खे।

0: शमन अली मीराली जो खूबसूरत आवाज़ ऐं अवां जूं सुंदर समातूं त दोस्तनि
1: AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
4: सुनते रहो GFM 90.4.

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि भेनरुनि खे प्रोग्राम ई भली कार ऐं दोस्तनि सां माज़रत, काफ़ी ॾींहंनि खां वठी ज़ुकाम ऐं गलो ख़राब आहे, जंहिंजे करे मुंहिंजो आवाज़ थोरो तव्हांखे अॼु तब्दील महसूसु थींदो हूंदो त गलो ख़राब आहे बाबा, ऐं सर्दी अची रही आहे, थोरो थोरो वेझो थींदी पई वञे, ऐं गर्मी जेका आहे न उहा थोरो थोरो परे थींदी पई वञे। हाणे जॾहिं इहा सर्दी वेझो ईंदी आहे ऐं गर्मी परे थींदी आहे त इन जे विच वारो जेको टाइम हूंदो आहे न उहो असां सभिनी जे लाइ सिहत जे हवाले सां ॾाढो संगीन हूंदो आहे। जेकर थोरो बि लापरवाही थी वई न त पोइ इहो मुआरो ई कमु हूंदो आहे, गलो ख़राब हूंदो ऐं तव्हां पोइ ॻाल्हाए बि न सघंदा। त एहतियात छा करणो आहे, एहतियात इहो करणो आहे त भई थधे पाणीअ खां थोरो पंहिंजे पाण खे बचायो, जेके तमामु थधियूं शयूं आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु घटि कयो। बर्फ़ जो त इस्तेमालु मुंहिंजे ख़्याल में त सफ़ा ई न कयो, अगरि फ्रिज जो पाणी पियो था त बि उहो नॉर्मल टेम्परेचर ते हुजे, उहो इस्तेमालु कयो। ऐं उन खां अलावा रात जे टाइम में जेके असांजा ॿाहिरि या भेनरूं खुलियल आसमान जे हेठां आराम ई थींदा आहिनि, त खुलियल आसमान जे हेठां ईअं थींदो आहे त हिन वक़्तु रात जो टाइम में 12-1 वॻे खां पोइ रात ॾाढी सही तरीक़े सां थधी थी वेंदी आहे, त इन जे करे रात जो थधी थींदी आहे त पोइ ज़ुकाम थींदो आहे। त पंहिंजे लाइ का चादर ज़रूर रखो ऐं उहा ओढ़ींदा कयो, ऐं चादर ओढ़ींदा त उन सां इहो थींदो जो तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जी कैफ़ियत खां बची वेंदव जेका हिन वक़्तु मां जंहिं कैफ़ियत में आहे। त दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे बि शामिल कंदा हलूं था।

गुलाब लिगारी जो घोट है विशाम खान रिंद का असो प्यारो भा शायर गाजी खान रिंद जो मैसेज आयो है उन गड है फिजान ले रिंद चवन था सर दिल खुश कर दी आपने फरमाइश पूरी कर हाजिर अदा फरमाइश तह जरूर पूरी थी हाँ ही पूरी कर दिल जाए कर बेहतरीन खुशबू लिगारी जो आवाज ढो सुठो है कोशिश कंदस मुझे लाइब्रेरी में खुशबू लिगारी जो जो सॉन्ग है को सुठड़ो पियल है तो तहे वो बुधाया तो जरूर बुधाईदास एक गाल याद रखो न सिर्फ तमाम बल्कि जो भी असा लिसनर्स हैं उ समूरा असो सरमायो अव सरमायो इन है जो अगर लिसनर है तो रेडियो भी है मुझे साई लिसनर्स के तमाम घनी अहमियत दिना उहे असांजे लाइ तमामु घणी अहमियत भरिया हूंदा आहिनि त खुशबू लिगारी तव्हांखे ज़रूर ॿुधाईंदासीं तव्हां उन जे लाइ दिलजाए कयो हलूं था कंहिं ॿिए दोस्त जे मैसेज जे तरफ़ त असां सां गॾु आहे केरु आहे चवे थो सलाम गुलाब भाई आप कहां गुम थे शो नहीं करते थे अच्छा 78 मोरी का राजा हमीर चंद्र किशोर कुमार पवन कुमार टेलर मास्टर हीरा लाल आकाश कुमार जानी हाणे मुंहिंजो शो जेको आहे न उहो फ्राइडे वारी जॻहि ते सेटरडे ते कयो वियो आहे सेटरडे ते हाणे तव्हां मूंखे ॿुधी सघंदा हिन ई साॻे टाइम ते जंहिं टाइम ते असांजो हू शो हूंदो हुयो उन ई साॻे टाइम ते तव्हां मूंखे ॿुधी सघंदा इंशाल्लाह ताला रेग्यूलर शो ही हलाईंदासीं तव्हां दिलजाए कयो बाक़ी जुमे वारो शो गुज़िरियल ॿिनि हफ़्तनि खां वठी न थी सघियो हुयो हुन जो सबबु इहो आहे त हीउ गलो ख़राब ऐं बुखार वारी कैफ़ियत बाबा असां बि बीमार थींदा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि न आहे रुगो तव्हां न आहियो थींदा त असां सां गॾु आहे एहसान जान सहरदी माड़ी अच्छा इहो सहरदी माड़ी इहो किथां खां आहे मूंखे इन ॻाल्हि जी सम्झ बिल्कुलु बि कोन आई आहे त एहसान जान तव्हां मूंखे ॿीहर मैसेज कजो जंहिं में वाज़े तौर जेको आहे न लिखी करे ॿुधाइजो त पुलजी स्टेशन खां पोइ पठाण खान खोसो जो मैसेज आयो चए थो भाईजान गाना ॿुधायो दादा गाना ई गाना हलनि पिया मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां दिलजाए कयो सजाद अली मकली ठटा खां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा मिठा साईं महिरबानी तव्हांजी तव्हां बि असांजे शो में शामिल थिया आहियो त हिन वक़्तु खुशबू लिगारी जे आवाज़ जे तरफ़ हलंदासीं उन खां पोइ हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जे तरफ़

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: तो फिलहाल तो पीछे मिली
4: कौन क्या करेगा?
3: कोई कुछ भी नहीं करेगा.
4: मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा. कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला, ना बगैर दाढ़ी वाला, ना मूंछों वाला वडेरा, कोई भी साथ नहीं देगा. जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें, बगैर दाढ़ी वाले भी करें, मेरे पे एहसान करो, धक्का दो मेरे को. इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी.
5: इंसाफ सजा मिले आज जैसा
6: टंडो आहे त मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारड़ीअ खे जिंसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इनकशाफ़. नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार अॾो जो एतिराब करे वरितो. पुलिस मूजिबि अंजुम मलवासी पंजनि वरनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो. वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारड़ीअ सां ज़्यादती जी तसदीक थी. जवाबदार कासिम कुंडवाणीअ गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो एतिराब कयो आहे. वधीक जांच करे रहिया आहियूं.
7: इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हम

0: पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब ॼणाईंदे भाड़नि में ॻाटे ट्रोड़ वाध करे छॾी। खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया। शहरनि सख़्त परेशान। शहर सखर में शहरी इताद जो एतिजाज, अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो।
1: इंसाफ़ जे वक़्त सरफरामी ज़रूरी आहे। ज़िले अदालतनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया फैदी चयो आहे त ज़िले अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवाननि जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरामी यकीनी बणाए।
0: निशाने हैदर मेजर शहीद राजा।
2: आपकी आमदनी मुलाजमत से हो, कारोबार से या फ्रीलांसिंग से, अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाएं। FBR की वेबसाइट या टैक्स आसान ऐप के जरिए अपना इनकम टैक्स कोशवारा जमा करवाएं। या इस सिलसिले में FBR के करीबी दफ्तर से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। जदीद डेटा सिस्टम्स के जरिए आपकी आमदनी आसान।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
9: छा

0: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

रखीजे सॼण तोसां यारी अथम, रखीजे सॼण तोसां यारी अथम, मुसीबत में हिमत न हारी अथम। रखीजे सॼण तोसां यारी अथम, मुसीबत में हिमत न हारी अथम। अची न अची तूं अंगण यार मुंहिंजे, अची न अची तूं अंगण यार मुंहिंजे, मगर वाट सारी बुहारी अथम। ॾेई बेदिलीअ खे पंहिंजी दिलि मुफ़्तमी, ॾेई बेदिलीअ खे पंहिंजी दिलि मुफ़्तमी, चवां छो त कंहिं दिलि अज़ारी अथम। जोखे पंधन जो ॾुघो दास्तानु आहे, जोखे पंधन जो ॾुघो दास्तानु आहे, चरी दिलि ईअं चई सुम्हारी अथमि।

तमोजा मिठा ताईं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं GFM नेटवर्क ते ऑनियर कयो वेंदो आहे, जंहिं में असां सां गॾु हूंदा आहिनि सखर लाड़काणू मीरपुर ख़ासि मातली मटियारी मोरो मेहरापुर ऐं सकरनि वारा प्यारा प्यारा असांजा लिसनर ऐं असांजे हिन शो में हूंदियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं पर मोकिलियल प्यार सारा प्यार भरिया मैसेजिस ऐं हुन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिया SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट पेसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा था हलूं। ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां ग़ुलाम सरवर बागाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर अला कंदो ख़ुशि हूंदव सदा अदा आमीन। अलाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि ऐं आबाद रखे। स्पेशली मां तव्हांखे भाउ ग़ुलाम सरवर बागाई साहिब तव्हांखे पंहिंजे हिन शो में भलीकार चवां थो। थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजा पुराणा लिसनर्स आहियो, हमेशह असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो, थैंक यू। हुन जे लाइ शमन अली मीरअली जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त मुंहिंजा मिठा साईं शमन अली मीराली मां ऑलरेडी प्ले करे चुको आहियां, ॾाढो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग हो, पर मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे शमन अली मीराली जे कलाम शमन अली मीराली जो कलाम ज़रूरु ॿुधायां। ऐं अदा जन डेडिकेट जेको कंदा उहो भूरो खान लाखो आज़िज़ अमानुल्लाह विस्तरो खे, त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। ॻोठ दलेल खान ज़रदारी खां हाजी सावल ज़रदारी पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो चए थो सर सलाम, प्रोग्राम वेरी नाइस ऐं डेडिकेट करे थो ग़ुलाम सरवर बागाई भूरो खान लाखो खे। अदाब सावल ज़रदारी साहब थैंक यू, लख अहसान लख कुर्ब तव्हांजा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, हुन जे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं खोड़ सारो प्यार अव्हां जे लाइ। ऐं असां सां गॾु आहे केरु आहे इल्ताफ अली गाडाही बलोच फ्राम कराची से, चए थो गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू डियर, आई एम फाइन, ऐं चवां था यूअर शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अदा तव्हांखे असांजो शो पसंदि अचे पियो, हुन जे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा अहसान, ऐं तव्हांखे मां पंहिंजे स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार बि चवां थो। ऐं लगारी अच्छा बिशाम खान रिंद खां शायर गादी खान रिंद जो ही टियों मैसेज आयो आहे, अदा तव्हांजी फरमाइश असां पूरी कई आहे ऐं उमेद आहे तव्हां उन सॉन्ग खे इंजॉय कयो हूंदो, ॿुधो हूंदो।

साईं ज़िंदगी हिकु डिघो सफ़र आहे जंहिं में कॾहिं ख़ुशियुनि जा लम्हा अचनि था त कॾहिं डुख परेशानियुनि ऐं आज़माइशुनि सां मुंहुं ॾियणो पवे थो। हिन सफ़र में जेकॾहिं को सचो मुख़लिस ऐं वफ़ादार साथी गॾु हुजे त ॾुखिया रस्ता बि आसान महसूसु थींदा आहिनि। साथ सिर्फ़ कंहिंजे भरिसां बीहण जो नालो न आहे, पर साथ जो मतिलबु आहे ॾुख में हौसलो ॾियणु, ख़ुशीअ में ख़ुशि थियणु, मुश्किल वक़्त में हथ न छॾण ऐं ख़ामोशीअ खे बि समुझणु। सचो साथी उहो हूंदो आहे जेको वक़्त जे बदिलजण सां पंहिंजो रवैयो न बदिलाए। ज़िंदगी में दोस्त, शोहरत ऐं आसाइशूं पंहिंजी जाइ ते अहम आहिनि, पर हिकु मुख़लिस साथीअ जी मौजूदगी उन्हनि सभिनी खां वधीक क़ीमती हूंदी आहे। जॾहिं इंसान मायूस थी वञे, रस्ता बंदि नज़र अचनि ऐं उमेद ख़तम थियण लॻे न, तॾहिं हिकु मोहबत भरियो जुमिलो ऐं हिकु सचो साथ इंसान खे ॿीहर बीहण जी ताक़त ॾेई सघे थो। जेको जुमिलो हूंदो आहे त तुंहिंजो हुजे साथ त सफ़र में थकावट महसूस नथी थिए, त तुंहिंजो साथ हुजे त ॾुख बि अधूरा लॻनि था ऐं ख़ुशियूं ॿीणियूं थी वञनि थियूं, ऐं तुंहिंजो साथ हुजे त ज़िंदगीअ जे हर मोड़ ते उहो यकीन रहे थो त असां अकेला न आहियूं। ऐं ज़िंदगीअ जे हिन सफ़र में अहिड़ा माण्हू हमेशह साण हुजनि जिन जो साथ मतिलब परस्तीअ खां पाक, मोहबत सां भरपूर ऐं वफ़ादारीअ सां मज़बूत हुजे। त अहिड़ो इज़हार करे रही आहे फरज़ाना परवीन बि, त अचो त फरज़ाना परवीन जो ई बहितरीन हिकिड़ो सॉन्ग ॿुधूं।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मोरो लैब डायग्नोस्टिक सेंटर दादू रोड मोरो में फालिज, मिर्गी जा झटका, माजूर बार, मथे जो सूर, चेल जो सूर, कंधे ऐं दिमाग़ जी टीबी, शुगर, सीने, दम, ब्लड प्रेशर, मैदो, जिगर, साई, जोड़न ऐं दिल जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर कोमल खालिद, MBBS, MD मेडिसिन. हर छंछरु ते मंझंदि 3 खां शाम 7 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी आहे. एड्रेस मोरो लैब डायग्नोस्टिक सेंटर दादू रोड मोरो. वधीक मालूमात ऐं राब्ते जे लाइ 03002826331 ऐं 03002627331.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमालु करियो निजाते बवासीर कोरस. बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस. निजाते बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287. सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम.
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल.
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में भली कार त मुंहिंजा मिठा साईं प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि शामिल कंदा हलूं था जन असां ॾांहुं मैसेज प्यार मोहबत मंझां लिखिया आहिनि त हुननि जा मैसेज हिन वक़्तु उहे बि इंतज़ारु कंदा हूंदा दादा गुलाब लाइ छो असांजा मैसेज पढ़ण में ई देर करे रहियो आहे त मुंहिंजा मिठा साईं देर बिल्कुल बि न आहे ऐं टाइम अची वियो आहे तव्हांजा मैसेज पढ़ण जो त ॻोठु हाजी दलेल ज़रदारीअ खां असांखे ॿुधी रहियो आहे हाजी सावल ज़रदारी चए थो सर सलाम अदा वालेकुम सलाम ऐं चवनि था प्रोग्राम वेरी नाइस थैंक यू अदा लख एहसान लख कुर्ब तव्हांजा मुंहिंजा भाउ तव्हां प्रोग्राम खे पसंदि करे रहिया आहियो ऐं अदा जन सलाम चई रहिया आहिनि गुलाम सरवर भागाई ऐं भूरो ख़ान लाखो खे त अदा लख महिरबानी तव्हांजी करोड़े करम जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो गुलशेर बबर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो उन सां गॾु आहे मुज़म्मिल बबर ॻोठ अलाह वरायो बबर खां त महिरबानी अदा गुलशेर तव्हांजी मुंहिंजे भाउ जो बि नालो गुलशेर आहे ऐं तव्हां मुंहिंजा भाउ आहियो थैंक यू पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो उन जे लाइ तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी भाउ ऐं किथां खां तव्हां ॿुधो पिया इहो जेको अलाह वरायो बबर जो ॻोठु आहे इहो किथे आहे कहिड़ी स्टेशन खां तव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो असांखे ख़बर न आहे इहो असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो हफ़ीज़ सोलंगी मोरो शहर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चवे थो जानी गुलाब छा हाल आहे त जानी मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हां जूं दुआऊं आहिनि चए थो अदा प्लीज़ प्ले मुमताज़ मोलाई हथ मथे कयासीं अदा इहो मुमताज़ मोलाई जो मुंहिंजे ख़्याल में कलाम न आहे बरहाल मां तव्हांखे प्ले करे ॾियां थो ऐं चवनि था त पहले में FM सुनता था लेकिन आपकी वजह से अब शामिल भी हो रहा हूं अदा ये तव्हां जूं मोहबतूं आहिनि इहो तव्हां जो प्यार आहे जेके असांजा ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि सभिनि जूं जेके असांजे चवण ते असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहिनि ऐं पंहिंजी मौजूदगीअ जो असांखे अहसास ॾियारींदा आहिनि ऐं असांखे यकीन कयो हर आरजे जी पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी तलब पंहिंजी पंहिंजी ख़्वाहिश ऐं पंहिंजो पंहिंजो नज़रियो हूंदो आहे मुंहिंजे नज़रिए मुताबिक़ मुंहिंजे शो में जेतिरा मैसेज ईंदा आहिनि त मूंखे उन जी तमामु घणी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे मां ईअं महसूसु कंदो आहियां त हा बिल्कुलु माण्हू मूंखे पसंदि करे रहिया आहिनि तॾहिं मूंखे मैसेज करे रहिया आहिनि त इहो तव्हां असांजी हौसला अफ़ज़ाई कंदा आहियो असांखे बि शो करण में तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे उन जे लाइ असां तव्हांजा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं अस्सलाम वालेकुम भाई प्लीज़ प्ले सॉन्ग तूं मुंहिंजो सनम आहे मां तुंहिंजो सनम वाह साईं वाह अल्ताफ़ अली गाॾाही बलोच कराचीअ खां यार कलाम ॾाढो ज़बरदस्त तव्हां मूंखे चयो आहे उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं पर पहिरियां था हथ मथे कयूं त इहो बि मशहूरु कलाम ॾाढो हलियो हथ मथे कयासीं तूं ॾाढो आहे इन जे करे त ॾाढा जेके आहिनि न माण्हू उन्हनि खां बाबा बचणु घुर्जे त तव्हांखे मां ॿुधायां थो पने अकल बि पपन भुलो जो कलाम ऐं इहो अदा जन फरमाइश बि कई आहे ऐं उमेदु आहे त सभु गॾिजी हिन खे इंजॉय कंदा ऐं उन खां पोइ तव्हां नंढो हिकिड़ो ब्रेक आहे ब्रेक खां पोइ वरी वापसि जंहिं महिल ईंदासीं त पोइ कलाम हलाईंदासीं तूं मुंहिंजो सनम आहे मां तुंहिंजो सनम आहियां

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि में तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ खां भलीकार आहे, छो जो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचण वारो आहे ऐं हीउ प्रोग्राम असांजो हर जुमे जे ॾींहुं जुमे ते पहिरियों ऑनियर थींदो हुयो, हाणे हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो। ऐं GFM नेटवर्क जो प्रोग्राम आहे जेके असांजा लिसनर्स हाणे असांखे ॿुधणु शुरू कयो आहे त उन्हनि खे बि असां इहो ॿुधाईंदा था हलूं त हीउ जेको प्रोग्राम आहे हीउ प्रोग्राम तव्हांजे पसंदि जो प्रोग्राम आहे, तव्हांजो प्रोग्राम आहे ऐं इन में तव्हां शामिल थी करे असांखे हौसला अफ़ज़ाई कराईंदा आहियो। अहिड़ो ई असांजो हिकिड़ो भाउ जो मैसेज मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे, दिलि चवे थी सभ खां पहिरियां हुनखे पढ़ां। वॾा भंड खां अली असकर भंड साहिबु पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। सर, स्पेशली तव्हांखे मां पंहिंजे हिन नेटवर्क जे शो में भलीकार चवां थो। ऐं साईं अली असकर भंड साहिब जे बारे में जेका समूरा लिसनर्स खे मां हिन जो इंट्रोडक्शन करायां, त जॾहिं खां मां रेडियो ज्वाइन कयो आहे तॾहिं खां वठी ही मुख़्तलिफ़ असांजे प्रोग्रामनि में मुंहिंजा जेके शो थींदा हुया या असांजे सीनियर्स जा जेके शो थींदा हुया उन्हनि में तमामु वध खां वध शामिल थींदो आहे। ऐं एतिरे क़दुरु रुगो शामिल थियण न आहे पर हिन सां रेडियो वारनि जी एतिरी मोहबत आहे, हिन जी रेडियो वारनि सां एतिरी मोहबत आहे जो अदा जन सां असांजा पर्सनल तालुकात बि रहिया आहिनि, मुलाक़ातूं रहियूं आहिनि। ऐं तमामु घणो मां इंतिहाई थोराए थो आहियां त अली असकर भंड साहब जंहिंजो जन जा कुछ एहसान आहिनि जेके असांखे लाहे त कोन था सघूं पर ॻाईंदासीं ज़रूर। त महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं चवे थो सलाम त वालेकुम सलाम या अली मदद मौला अली मदद। चवे थो अदा ख़ुशि आहियो। जी अदा शुक्र अलहमदिल्ला, खंघ ज़ुकाम खां सवाइ बाक़ी अलाह ताला फर्स्ट क्लास कयो आहे। थैंक यू तव्हांजी महिरबानी। ऐं चवे थो अलाह साईं तव्हांखे आबाद कंदो। ऐं अदा जन सलाम चवनि पिया सर हाकिम अली जिस्काणी साहिब, अली अनवर भंड साहिब, गुलाब खान भेण ऐं चवनि था तुंहिंजी सिक सुहिणा सडरायो। अच्छा, मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में अदा जन फरमाइश कई आहे।

असां जे शो में गोठ उमेद अली ज़रदारीअ खां हे ग़ुलाम सरवर बागाई महिरबानी मुंहिंजे मिठा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम जी सूंहं बणिया उन जे लाइ तमामु घणा असां तव्हांजा थोराए था।

सभु जा मिठा ताईं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरीं हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि दोस्तनि जो, पंहिंजनि मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखो। कोशिश इहा कयो त तव्हांजे दिलि मां कंहिंजे लाइ बि का बि अहिड़ी ॻाल्हि न निकिरे जेका हुन जी दिलि आज़ारी करे वठे। त पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कंदव, पंहिंजनि दोस्तनि जो ख़्यालु रखंदव, त तव्हांजी ज़िंदगी बि खुशहाल थी पवंदी। ऐं पंहिंजे बचनि खे तालीम ज़रूर ॾियो, जीनी बि दुनियावी तालीम, ऐं न्याणियुनि खे बि ज़रूर तालीम ॾींदा कयो। त वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशरी जी ख़ूबसूरत आवाज़ तव्हांजी नज़र कयूं था, ऐं उमेद कयूं था त नेक्स्ट शो थोरी अगरि हयाती साथ ॾिनो त वरी पाण वेड़े तरीक़े सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही अलाह निगहबान।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कोई साथ भी नहीं देगा ना शरीयत वाला ना बगैर दाढ़ी वाला ना मूंछों वाला वगैरह कोई भी साथ नहीं देगा जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें बगैर दाढ़ी भी करें मेरे पे एहसान करो धक्का दो मेरे को इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी
4: पैसा के जो मुजरिमानों की सजा मिले आज मिले
5: टंडरो आदम मां गुजरियल ॾींहुं गुम थियल ॿार खे जिंसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इनकशाफ़ नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो इतराफ़ पुलिस मूजिब अंजम मलवासी पंजनि वरनि जी दुआनसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारीअ सां ज़्यादती तस्दीक थी जवाबदार कासिम कंडवाणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एतिजाज तालका इस्पताल बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो
6: इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी वॾे वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हम मुनसिब सां फोन ते राब्तो ॿिनि तरफ़ां लाॻापनि समेत ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई इराकी परॾेही वज़ारत मूजिब ॿिन्ही अॻवाणनि खिते जी तब्दील थींदड़ सूरताल ते ॻाल्हियूं कयूं राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो
5: यमन जे हुसैन बाबिल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो बाबुल मंदब जे अहम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबुल मंदब में हुसैन जे थाकनि खे बमबारी कई आहे जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे
6: आमने अर्मुज़ ते अरब मुल्कनि सां ॻाल्हियूं सूमर वारे ॾींहुं ओमान में थींदियूं ईरान तस्दीक करे छॾी इस्माइल वकाई चयो आहे त आमने अर्मुज़ जो कंट्रोल ईरान वटि आहे तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बे अमेरिका आहे असां जंग वारी हालति में आहियूं सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा
5: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नओं रिकॉर्ड क़ाइम करे वरितो पंजे ॾींहुं बि पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 रुपया पैसा महांगो थी वियो 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर मुक़रर जॾहिं त डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो ट्रांसपोर्टर्स बि पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब ॼणाईंदे भाड़नि में घाटे टोड़ वाध करे छॾी खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया शहरी सख़्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो
6: इंसाफ़ जे वक़्ति फरामी ज़रूरी आहे ज़िली अदालतनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर करणो पवंदो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस आफरी चयो आहे त ज़िली अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं नौजवाननि जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरामी यकीनी

0: रंडरो मस्ती भरसां पढ़ियल नारी ऐं नौजवान पारां पसंदि पढ़ण लाइ निकिरण खां पोइ नारीअ जे वारसनि नौजवान जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾी। जवाबदारनि अमजद फुलपोटर जे घर ऐं दुकान खे बायूं ॾेई साड़े छॾियो। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि अमजद फुलपोटरो घरवारीअ जे भाटीअ जी ज़ाल सां निकिरी वियो। नारीअ जे वारसनि इल्ज़ाम मड़ियो त अमजद फुलपोटरो नारीअ खे अगवा कयो आहे।
1: कुंडरी वेझो बिंदुरिन में मामूली ॻाल्हि सां झेड़ो थी पियो। फायरिंग कुहाड़ियुनि ऐं लठियुनि जो इस्तेमालु थियो। छह ॼणा ज़ख़्मी नासिराबाद में कपरी ऐं पंजाबी बिरादरी जे बिंदुरिन में झेड़ो थियो आहे। कुहाड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि कपरी बिरादरी जा छह माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि। पुलिस मूजिबि धुरिन में मामूली ॻाल्हि सां तकरार हलंदड़ आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-878 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
9: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
11: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?

0: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ ए मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
0: जी हा 2315525786
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

एक्सीडेंट थियल जी सर्जरी ऐं प्लेट लॻाइण जो जदीद तरीक़े सां इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर सईद यूसुफ अली शाह, ॾंदनि ऐं वात जे बीमारियुनि जो माहिर सर्जन, एड्रेस अली।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों की बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों की बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजीव दंदला तमाम खूबसूरत नासों में सोने समाधान से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर, जादू की बारिश, लाशों और खजानों के साथ दुआएं पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागता, जमीन से आसमां तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, हमसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें होने वाली हूँ। यहाँ पर बातें भी जनाब इतनी सारी हम करने वाले हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो ही जाएगा कि मार्केट में अगर आप जाएं तो आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, क्योंकि यही चीज हमारी कंफ्यूजन का बायस बन रही होती है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि भाई हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना होता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम बहुत ज्यादा वाली चीजें देख लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर जाता है। और इसी वजह से अगर आपको पता होना चाहिए, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाए तो उसके क्या और कितने सारे फायदे हैं, तो आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा और आप बस सीधे चले जाएंगे मार्केट और वहां से नाम लेकर तलब करेंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम ही काफी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें शेयर करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक रहता है इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो भी सदरा बताती है वो सारी चीजें सही होती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मजे की बात है कि भाई आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वाला भी सीन नहीं है कि सिर्फ लड़के लगाएंगे या सिर्फ लड़कियां लगाएंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लड़के लड़कियां हर कोई इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है वो जाहिर सी बात है आप सब लोग जानते हैं कि कितना अच्छा कितना काम का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसे हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके जनाब, तो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर।

लाइन बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल आने का काम करती है भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं कलाम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस मुखातिब आप लोगों के पास होंगे तो आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। तो साथ रहिए और साथ दीजिए, सुनते रहिए व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय

ओके जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से लोग, खूबसूरत से लोगों को खूबसूरत सी महफिल में वेलकम कहते हैं। और अगर आप भी हसीनों खूबसूरत बनना चाहते हैं तो जनाब

शास्त्र की दुनिया में जरा कदम रखिए और सुनिए हमारा प्रोग्राम ताकि आप लोगों को इस चीज का पता चल जाए कि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बातें की जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो बातें की जाती है वो इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि भाई आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके वो तमाम जो चीजें हैं खूबसूरती के मामले में जो कि आप लोग जरा पीछे हैं, भाई आप लोगों को कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, कोई आप लोगों को गाइड करने वाला नहीं होता, तो भाई आप हमारे प्रोग्राम से बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी खूबसूरती को एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा सबसे पहले बता देते हैं। ओके जनाब, तो आज की जो सवाल का टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, आज पहेली है या फिर ऐसे सवाल समझ लें, बस जो भी है बस आसान सा होने वाला है। तो आप मुझे ये बताइए कि जनाब कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। भाई आप लोगों ने ये थोड़ा सा हमें सुनने में मतलब ऐसा ना थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई हमेशा हमने देखा है दूध तो भाई व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, लेकिन ऐसा भी एक दुनिया में जानवर पाया जाता है जो काले रंग का दूध देता है। बिल्कुल जी, आप लोग मुझे उसका नाम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं लाइक का सबसे पहले इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग बड़े कंजूस होते हैं, वो पोस्ट को लाइक ही नहीं करते हैं, तो भाई लाइक किया करें, कमेंट किया करें, उसके बाद आप शेयर किया करें। ये तीनों काम आप लोगों के हिस्से के हैं तो जल्दी जल्दी से अपने हिस्से का काम निपटाइए और टॉपिक को फॉलो कीजिए। अच्छा, मुझे आज आप बताने वाले हैं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। हाँ जी, उसका दूध जो है वो ब्लैक कलर का है। मुझे जल्दी से जवाब बताइए और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है तो भाई आपको वेलकम कहा जाता है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो हैं वो बड़े सेटिस्फाइड हो चुके हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही होते हैं, तो जिंदगी में स्किन के प्रॉब्लम्स को जरा थोड़ा कंट्रोल में रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर एक प्रॉब्लम का हल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार हुई है जनाब। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप जब अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए तो वहाँ से नाम लेकर पाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है तो उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उस नंबर के ऊपर आप रब्ता कीजिएगा। तो नंबर क्या होने वाला है जनाब, नंबर है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, पंहिंजे खूबसूरती में इज़ाफ़ो आणियो। बाबा खूबसूरत रहण, खूबसूरत ॾेखारण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, सो तव्हां बि पंहिंजो हक़ सां वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करणु स्टार्ट कयो। ठीकु आहे, ऐं यहां पर हमारे साथ गुलाम फातिमा मौजूद जी। गुलाम फातिमा चन्ना हमें सुन रही है और बल्कीस चन्ना हमें सुन रही है, अब्दुल कदीर चन्ना हमें सुन रहे हैं, कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम फातिमा तो भाई छोटी सी हमारी लिसनर है, बड़ी हमारी पक्की वाली लिसनर है तो वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारा प्रोग्राम इतने शौक से सुनते हैं। और जी फरवा गुल हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आपी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसे। और बरकत रमत आनी जमाली बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, और बलोचिस्तान से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हमारे साथ फरवा कहती है आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट है, भले महबूब कर माना लगी तो प्यारा जी काबिल, डेडिकेट स्पेशली आप और तमाम लिस्टनर्स के नाम। ओके जी, डन हो गया। और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं, फहीम शेख विसरी सारो लोक, विसरे सारो लोक शालन विसरी तू तोखे केडो मुंह सांढ़ियो आहे साह में, वाह वाह वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम हज़रत, अदा चाल आहे खुश आयो सफ़त चा घुसलेट कलम मस जी डी इजाफ़ो
करती हूँ। कहते हैं प्रोग्राम तो लाजवाब है अमा हम आगे। थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा मानियो हाल अवाल जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन आई तमा गानो लिखियो बिल्कुल ताजो गानो बुदू था बाबा गज्जी करे बुदनासी। और हमारे साथ है ये रशीद खोसो भाई कहां से सुन रहे हैं इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूं और हैदराबाद से भी। अच्छा हैदराबाद से मतलब आप हैं कटे सटे। कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है कोई भी सिंधी सॉन्ग मुमताज मलाई का सुनाइएगा हाजिर हाजिर। और फहीम भाई कहते हैं वाह दादा तमाम बेहतरीन कलाम आए। और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो हाउ आर यू हो फाइन बेटा मां सब ठीक है चाचा तमाम पानी हाल अहवाल बुधायो तबियत जो दसियो की आयो ठीक ठाक। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे स्मार्ट भाई वेलकम वेलकम। कहते तू खूबसूरत मानो जो जिक्र कंदो आही पोए पान डे समझा तो हां भली ता पान डे समझो तमाम जलाई अच्छा मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी शो वीआईपी है हमेशा की तरह थैंक यू वेरी मच। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। और चाचा खालिद क्या कहते हैं

0: बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, चाचा खालिद कहते हैं कि मेरी तबीयत में मजा नहीं रहता आजकल, फिर भी आपका डी स्किन ब्यूटी शो जरूर देखता हूँ, बस आप मेरे SMS रीड किया करें। बिल्कुल जी चाचा, आपके मैसेजेस रीड रखते हैं। और गुलाब जो गुल हमारे साथ ही, गुलाब जो गुल वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सिस्टर असांखे केड़ी खबर शायरी छा आहे, असां यूं लिखंदा आहियूं जेको तव्हांखे नायूं चई सघंदा। अच्छा चलो ठीक आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। वैसे बि कहते हैं कि जो हम कह नहीं पाते उसको लफ्ज़ों में बयां कर देते हैं। और मोहम्मद हनीफ हमें सुन रहे थे, नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। अनवर भाई कहते हैं बस इहो था पुछूं, अदी खुश आयो न? हा अदी तव्हांजी सफ़ा खुश आहे। अनवर भा तव्हां ॿुधायो, ठीक ठाक आहियो, मज़े में? और किशोर भाई तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे काला, इहो वरी चवंदो। अच्छा हिदायत अहमदानी कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? असां सां भी दिल लगियूं, हेॾे भी ठगियूं, होॾे भी ठगियूं मास्टर। हा हा बिल्कुल, इहो गानो हलायूं था तव्हांजे लाइ, ऐं ॾाढो भलो सॉन्ग आहे, सो मिलजी करे इंजॉय कंदासीं। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चंदा, आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, माशाल्लाह माई मोस्ट फेवरेट आज से। आपको भी वेलकम कहते हमारी प्यारी स्वीटी दर्दी दिल। चले यहाँ पर हम बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ बातें करेंगे, आप सब लोगों।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
3: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

क्या बात है, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें हो रही है और बातें क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आप सारे लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, अपनी खूबसूरती को रिपेयर कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं और जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज कर लिए होते हैं तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी स्किन के हिसाब से नहीं होते, हमारी स्किन टाइप के लिए नहीं होते, तो उनको इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही जब हमारी स्किन जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें ये लगता है कि भाई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में वो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करती है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानते हैं कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ऐसे जनाब स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया है, उन्होंने ये फार्मूला बनाया है और जिसके अंदर आपके लिए वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, अल्फा आर्बुटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई। और ये जो वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप लोगों को मिलने वाले। और इसका फायदा ये होता है कि भाई जो आप लोग महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं ना, खास करके खवातीन, तो उनको जो फेशियल के बाद जो अच्छा सा निखार मिलता है, अच्छा सा रिजल्ट मिलता है ना, क्योंकि ये जो वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना ये फेशियल्स के अंदर एड किए जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है जिसे आप नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं ना वो बहुत हाई लेवल के देने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसे मर्द हसरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके कोई भी अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप बेफिक्र होकर लगाइए, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपको रिजल्ट देने वाली है जनाब सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में अगर आप हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को वेलकम करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने जाएं तो इसके ऊपर जो है ना एक डॉक्टर खातून का फोटो है, तो ये देखकर ना जरा आप पहचान लीजिएगा कि हाँ जी हम बिल्कुल सही प्रोडक्ट परचेज करें। क्योंकि कई मरतबा हम जब दुकानदार की जानिब जाते हैं उसे मालूम करते हैं कि भाई फलां प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, तो वो आगे से यही कहता है, अगर उसके पास नहीं होता तो वो कोई भी दूसरा सा प्रोडक्ट थमा देता है, कहता है ये उससे ज्यादा अच्छा है ले जाइए। इन चीजों में आप इन बातों में मत आइएगा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब कीजिएगा। उसके पास नहीं है तो उसको आप नंबर दीजिए जो आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है, बोलिए भाईजान ये नंबर डायल कीजिए और अपनी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए। आप जब अवेलेबल करा लेंगे ना उसके बाद हम आकर आपसे परचेज कर जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे जो पूरे प्रोग्राम में आपको बता दिए होंगे, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें होंगी जनाब, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। आप जरा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा और मुझे बताइए कहाँ से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा आप लोगों से दोबारा रिपीट करते हैं। तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है, यानी कि उसका जो दूध है उसके दूध के कलर का ब्लैक है, दूध का जो कलर है वो ब्लैक है। जी बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कीजिए हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर रखा करें, ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। जी तो हमारी पोस्ट पर आप लोग मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स हैं और आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जानिब आ ही जाते हैं। अच्छा, गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है आपकी और सारे लोग ठीक ठाक हैं और आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है जनाब, थैंक यू वेरी मच। और अनवर भाई आपने टॉपिक का जवाब तो दिया ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक लिखा है, तो टॉपिक आई थिंक आपने अभी सुन लिया होगा, तो उसका जवाब बताएं। और मोहम्मद जमान ने तो वखरा ही जवाब दे दिया, कहते हैं टॉपिक का जवाब है भैंस, भैंस तो भाई व्हाइट दूध देती है ना जो हम सारे लोग पीते हैं, तो वो कहां से काला दूध स्टार्ट हो चुकी है। और परवा कहती है टॉपिक जादू वाली बकरी या फिर भैंस, अब ये तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच गई है। वापस आ जाए मैडम साहिबा। और स्मार्टू गोपांग हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं मैं भी आ गया स्टाइलिश आरजे कंबर सिटी से आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस वॉइस, प्लीज प्ले सॉन्ग। ओके जी, आपका गाना भी लगाते हैं। और सिकंदर हमारे साथ है, सिकायल सिकंदर अली जकरानी जिले कश्मोर खां, वालेकुम अस्सलाम, कीअं आयो अदी भेण, प्रोग्राम जबरदस्त हले पियो, थैंक यू वेरी मच प्यारा तांजो मोहब्बतवान प्रोग्राम के पसंद कंदा आयो।
انور بھا کہتے ہیں شکر الحمدللہ ماں ٹھیک ٹھاک آیا رب پاک اواں کے رب پاک اواں کے سنی عمر ایڑو ہی رکھے آمین آمین آمین اچھا فہیم بھائی کہتے ہیں دادا کالے رنگ کا جانور ہوتا ہے کالا دودھ نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے تبھی تو پوچھا ہے اور کشور بھائی کہتے ہیں ارے بابا ہاں ہاں صحیح صحیح ہاں گال سمجھ میں آئی پھر یہاں تھوڑی گھٹ آئی سمجھ میں وہ ہمارا کبھی کبھی صابن سلو ہو جاتا ہے اچھا محمد راشد اوان کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر سدرا ہمیشہ کی طرح پروگرام اچھا جا رہا ہے خوش رہیں آمین سلام سب لسنرز کو وعلیکم السلام جی سب کی جانب سے یاسین کھنڈ کہتے ہیں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی آپ بتائیں کیسے یہاں پر میں تو ذرا باتوں کو بریک لگاتی ہوں میرے پاس ایک آپ لوگوں کو سنانے کے لیے گانا ہے مست مست سا گانا تو آئیے ذرا اس پیاری پیاری سے گانے کو ہم انجوائے کرتے ہیں آج کل یہ ذرا انجام ہو چکی ہے چیز کہ آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں تو بس جائیے اپنے قریبی جنرل اسٹور سے معلومات لیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اپلائی کرنا شروع کیجیے چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے

ओके जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस ही देख रही थी, आपके फीडबैक्स ही, क्या बातें क्या बातें आप लोगों के मैसेजेस हैं। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आपको वेलकम कहा जाता है। बाकी जो लोगों में साइलेंट हो गए सुन रहे हैं वो भी जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। हाँ जी खामोशियां तो लीजिए और बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है ये भी बताइएगा। और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। हाँ जी

भाई क्या बात है, गाना वाकई बहुत अच्छा है, गाना एंजॉय करेंगे और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी। गुड आफ्टरनून, हाय सिद्रा, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ आपको वेलकम कहते हैं और ये हमारे साथ कहते हैं सिद्रा जी प्लीज सॉन्ग लगाइएगा तुम जो सनमा ही मा तू जो सनमा है, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके डन। अच्छा ये लिखते हैं कैसी हो सिद्रा मुस्कान जी, खालिद सुमरो फ्रॉम मेहरापुर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, वेरी नाइस और आपके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है और सॉन्ग सुना ममताज मोलाई का।

जी खाले सुमरो आपको वेलकम कहते हैं। पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में मिल रही है, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। और शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद है, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद बाजी आवाज में। ओके जी भाई बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं आगे, फोजिया का गाना प्ले कीजिए। ओके आई ट्राई। और चाचा खाले चुनी जो हमारे साथ कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। ओके माँ चाचा तांजो गानो हलाईदम तापानी सीट ते वेही रहो। और गो टू मोमन तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते तवा जो शो वेरी नाइस आए। सलाम तवा के, वालेकुम असलम तवा के, हाल अहवाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कौन है।

जी हार सिंगार भी कयो पर गड गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अना तई अवेलेबल कोन थी आए तो वनो बाबा पुछी अचो मालूम आत बैठो नथी मिले तो पोई तांगे छाकणा जेके नंबर तांके बुधाया आन उन नंबर से तुम एक दफो कॉल या वरी मैसेज करी बैठो उनन के चो अदा भाऊ असा जे गोठ में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न कराईंदा तसा इस्तेमाल किया कंदासी सुनन के चो अवेलेबल करायो आई असा इस्तेमाल कयो सोना सोना थी वनो आई असा जे खूबसूरती सफा नेक्स्ट लेवल ते हली वने सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा सबनी मानो जलाए आहे यानी कि दवा मर्द हजरात आयो खवातीन आयो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेंजे अंदर विटामिन ई बीट्स आहे माइक्रो बीट्स आहे के 2-in-1 फार्मूला आहे तो यूज कीजिए खूबसूरत हो जाइए और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए।

अच्छा जी, गाना तो सुनेंगे, साथ साथ आप क्या कह रही हैं थोड़े से मैसेजेस भी पढ़ लेते, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा हो जाते तो फिर मसला हो जाता है। दर्द दिल कहती है कि कुछ दिन छोड़ नहीं सुना, कुछ मसरूफियात थी, मगर चंदा भूली नहीं, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, जब शो का टाइम होता था तो मिस यू। ओके जाना, बहुत शुक्रिया, वैसे हमने भी आपको बहुत मिस किया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर वो शख्स जहन से उतर जाए। आए हाय हाय। अच्छा किशोर भाई, हिकड़ो सिंह तस या बस सिंह तस भी रहे, ये बुधायो। अच्छा सिकंदर अली कहते हैं शुक्रिया ऑल ग्रेट लाइफ वालों को। ओके दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा। यासीन कहते हैं शो वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। और नसीम गुलाम दीन भाई हमारे साथ कहते हैं जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जानी पहचानी लगती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कहते हैं विलेज अली बख्श जखड़ो नूरियाबाद से नसीम जखड़ो भाई, आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल लिखती है कि उलझी हुई सी जिंदगी, थके हुए से हम, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगु और सारे मसले हल। अल्लाह मनाइए। अच्छा नसीम भाई लिखते हैं कि डी स्किन जिसने भी लगाई उसको नजर तो पक्की लगेगी। अरे भाई क्यों लगेगी नजर, ये बोलकर आप लोगों को रोकें तो नहीं कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना लगाए, क्योंकि कुछ लोगों की ये ऐसी आदत होती है, मैंने देखा है उनको बड़ी ये चीज के ऊपर बिलीव होता है कि भाई बड़ी तेजी से नजर लग जाती है, लगती है नजर, लेकिन ऐसा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल तो रखना नहीं छोड़ेंगे ना, तो खूबसूरती का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए।

मेरी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई, ताकि हम अवेलेबल करा सके और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। भाई हमें भी दिल जाए हो कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर फरवा कहती है, यहाँ पे अर्ज किया है, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी अच्छे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह वाह वाह वाह। अच्छा अली मोहम्मद भाई हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इकबाल लाशारी विलेज सोनो खान लाशारी मीरपुर खास से हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जबरदस्त। और यासीन खंड आपको बिल्कुल गाना सुनाते हैं, आप हमारे प्रोग्राम पे जरा बने रहिएगा। अखलाक भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके, कहते नाइस शो, थैंक यू। नसीम भाई कह रहे हैं, हम पहली बार ऐसा जानवर सुन रहे हैं जिसका दूध काला है, क्या हम दूध पी सकते हैं? नहीं नहीं, आप उसका दूध नहीं पी सकते आप सिर्फ भैंस का दूध पीजिए, ठीक है? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा यहाँ पर टाइम देखा तो टाइम हुआ है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी और साथ में न्यूज ब्रेक भी होने वाली है, तो आप कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि आपका हमारे साथ प्रोग्राम में पूरे पूरे 3 बजे तक का है, तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: आप नए और मुस्ते अरब मुल्कन सा गालियों सुमर वारे डी ओमान में थींदियो ईरान तस्दीक करे छडी इस्माइल बकाई चयो आए तो आप नए और जो कंट्रोल ईरान वट आए तेल कीमतन में वाद जो जिम्मेवार भी अमेरिका आए असा जंगवारी हालत में आया हूं सऊदी अरब उर्दन है जापान के ईरान खराब ठहरा जी हिमायत करने सख्त नतीजा भोगना पौंदा
5: इराक में तेल की लाइन ते हमले बाद सऊदी प्रदेश वजीर फैसल बिन फरान जो आलमी इराकी हमसिब सा फोन ते राबतो बिन तरफन लागा कर समय ताजी सूरत हाल ते गाल इराकी परदे इदारत मुझे बिनी अगवान खिते की तब्दील की सूरत हाल ते गाल गई है राबतन में रहने इतफाक कर
4: अमेरिका जारियत बंद करे तो अपने खुली में दो ओमान में अरब मुल्कन सांदड़ इजलास में ओमान ईरान में थींदड़ मुआदे से सयूं थन्द ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शान है तो सूमर से थन्दड़ इजलास में शरीक थन्दड़ मुल्क के सरजमीन त ईरान से हमला थे अमेरिका के पाबंदियों नाकाबंदी खत्म कर घुर्जन
6: नमाज पढ़ने गया पीछे से बच्ची गुम हो गई जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं तो खिलाफ तो पीछे मिली कौन क्या करेगा कोई कुछ भी नहीं करेगा मैं गरीब हूँ ना ऐसी मर जाऊंगा कोई साथ भी नहीं देगा ना शरीयत वाला ना बगैर दाढ़ी वाला ना मूंछों वाला वगैरह कोई भी साथ नहीं देगा जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें बगैर दाढ़ी वाली भी करें मेरे पे एहसान करो धक्का दो मेरे को इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी
5: टंडो आदम गुजरियल ढी गुम थे बारे के जिनसी डाढ़ाई बार कतल करण जो इंकशाफ नींगरे जो लाश हथ जवाबदार गिरफ्तार डोह जो एतराफ कयो पुलिस मूजिब अंजुम मिलवासी पंज वरियन जी दुआ अंसारी जो पुरानी तबलीगी मरकज वटां लाश मिलियो हो वाके शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो त बाड़ीअ सां ज़्यादत जी तस्दीक थी आहे जवाबदार कासिम खे गिरफ़्तार कयो आहे जंहिं डोह जो एतराफ़ कयो आहे वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो आहे तालका इस्पताल खे बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो कयो वियो आहे
4: इंसाफ जी वक्त सिर्फ़ फरहमी ज़रूरी आहे ज़िलाई अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्त

0: त शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी जी कुर्बानी वतन जी मिटी ऐं तक़द्दुस लाइ रोशन मिसाल आहे।
1: आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहाली वारी तहरीक़ दौरान शहादत माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। वारसन ऐं पीपी अॻवाणनि जी खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी शहीदनि खे भेटा पेश। पीपुल्स पार्टी जो अॼु शाम केन शाह में जलसो बि थियल।
0: टंडो मस्ती भरिसां परणे लारी ऐं नौजवान पारां पसंदि जे परणे लाइ निकरण खां पोइ नारी जे वारसनि नौजवान जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾी। जवाबदारनि अमजद फलफोटो जे घर ऐं दुकाननि खे बाहियूं ॾेई छॾियूं। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि अमजद फलफोटो घरवारी जे भाइटे जे ज़ाल सां निकिरी वियो आहे। नारी जे वारसनि इल्ज़ाम मड़ियो त अमजद फलफोटो नारीअ खे अॻवा कयो आहे।
1: मुंहिंजो दड़ो भरिसां मुबैना तौर अॻवा थियल बलड़ेजीअ जो ज़मीनदार नवाब सूमरो ऐं संदसि दोस्त दीदार बहलम बाज़ियाब थी घर पहुची विया। वारसन पारां दुल्हन छराइण सां खेन घर वठी आया। पुलिस पारां ॿिन्ही मुगवियुनि खे बाज़ियाब कराइण जी दावा। इलाइक़े में ॿिन्ही मुगवियुनि जे बाज़ियाबी पैसनि एवज़ थियण जा चोबोल।
0: मेहर जे बिलावल कॉलोनी ऐं एजाज़ कॉलोनी जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जे खोट खिलाफ़ पैदल मार्च कयो वियो आहे। शहरनि जो प्रेस क्लब अॻियां एहतियाती मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। सहूलियतुनि फराहम करण जो मुतालबो कयो आहे। अॻवाणनि चयो आहे त शहर में पीअण जो पाणी नाहे, सफ़ाई जो बि को निज़ाम नाहे। हुकूमत नोटिस वठे।
1: कादिरपुर पुलिस चौकी भरिसां मोटरसाइकिल वाह में किरी पई। इलाइक़े वासी ॿिनि निंगरनि खे बचाए वरितो। तेज़ रफ़्तारीअ सबबि मोटरसाइकिल डेंगड़ो वाह में किरी पई। ॻोठाणनि बर वक़्तु कार्रवाई कंदे ॿिनि निंगरनि खे बचाए वरितो। मोटरसाइकिल खे बि वाह मां ॿाहिरि कढियो वियो।
0: ऐं मिठी भरिसां फसुल जे भेल तां वॾेरे जे पुटु गॾह खे कुआड़ी हणी ज़ख़्मी करे छॾियो। ॻोठ लोहार में जवाबदार राहिब सां बेज़बान जानवर खे कुआड़ियुनि जा वार करे ज़ख़्मी कयो। गॾह जे मालिक अर्शद सां जो चवण आहे त वॾेरे जे पुटु फसुल जी भेल तां गॾह खे बेदर्दीअ सां कुआड़ियूं आयूं आहिनि। जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटू लगण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छिटू पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी।

0: स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिनि लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
3: जी हा, 2131-5526।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज।
4: डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक जी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुका है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप यकीन जाने बड़े ही खुश हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना, सही वाले प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो सही वाला प्रोडक्ट जब आपकी सिद्रा आपको बता रही है तो उसके ऊपर अमल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और सिद्रा बाजी जो भी बताती है बिल्कुल सही बताती है। ओके जी, तो चाहे आप किसी भी सिटी से हमारा शो सुन रहे हैं, किसी भी गोड से आपका ताल्लुक है, किसी भी जगह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल सी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी, जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया है सुनना, तो उनको भी वेलकम हो गया। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। बिल्कुल जी, और जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे पोस्ट पर आइए, हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का खूबसूरत से लिसनर्स हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको मैं नंबर्स बता दी उनके ऊपर रब्ता आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई मरतबा जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई जान बताएं जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही या फिर नहीं, तो आगे से मुझे ये जो लोग कहते हैं ना कि बाजी असां वटि त कोन थी मिले, अगर तव्हां वटि कोन थी मिले त तव्हांखे जो हेॾे टाइम खां वठी मां नंबर ॿुधाईंदी अचां थी, त नंबर ॿुधाइण जो जेको मक़सदु हूंदो आहे इहो ई हूंदो आहे त तव्हां बाबा हुन नंबर ते राबितो करे वठो, ऐं नंबर ते राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां बि चाहियो था त बाबा असांजे करीबी जनरल स्टोर ते ॻोठ में अवेलेबल हुजे, त पोइ तव्हां छा कंदा, डायल कंदा 03-12-50-25-907, 2312-50-970, ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309, 3032-73 84309 ही नंबर आ जेको तहां डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सगो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा अगर ताके डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहयो आहे तो फेस वॉश अन्या थोड़ी थोड़ी जगह ते अवेलेबल नाए थियो तो जदे फुल सफा अवेलेबल थिंदो को फेस वॉश के बारे में भी ता सा ढेर सारी गालियों थिंदो पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जदे हाने हर जगह ते मिली रही आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वई आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मा तवा के फायदो वठन घुरजे मां तो बिल्कुल यो चंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मा फायदो वठो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जी खूबसूरती जे लाए सफा घणी फायदेमंद आए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग बड़े ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की जो है ना वो केयर और हिफाजत भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में जनाब एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है और ये जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा जो कि आप महंगे महंगे फेशियल कराने के बाद ही हासिल करते हैं। तो आपका एक तो टाइम भी बच जाएगा, दूसरा आपके पैसे भी बच जाएंगे। बस मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, बस आप जाइए परचेज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने जाएं तो निशानी के तौर पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो डब्बी है जब आप परचेज करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर आंटी का फोटो है, आंटी तो नहीं खैर से ये खातून है, लड़की है अच्छी खासी, तो उसका फोटो आपको मिल जाएगा। और जदी तक डॉक्टर माइक जो फोटो दिसो तो समझी वेंजो बाबा ओ या अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो स्किन जो डॉक्टर हूं ना उन्होंने बिल्कुल तैयार किया है, ये मेडिकेटेड फार्मूलो है। सो तुम बेफिक्र थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां की न सिर्फ खूबसूरती दींदी बल्कि तवां जी खूबसूरती में चार चंड भी लगाए छींदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, पांजी खूबसूरती जी हिफाजत कयो, सोणा सोणा थी वजो। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा क्योंकि भाई ये चीज भी पता होनी चाहिए कि मेरे कितने सारे लिसनर्स हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए 8881 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। फेसबुक वाली जो ऑडियंस है वो जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। आज का जो सवाल है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उसने थोड़ा सा हिला के रख दिया है। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने एक ने ही सही जवाब बताया मुझे जितना मुझे मतलब नजर आया है। तो एक इंसान ने उसका सही जवाब बताया और वो आप जरा देखिए कि किसने सही जवाब बताया है। और नसीम भाई कहते हैं कि मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब है ओके। और जी नूरियाबाद से आप हमारा शो सुन रहे हैं, नसीम भाई आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा शमन का गाना बिल्कुल जियो करे सलायूं था शमन जो गानो यासीन खंड था वेरो बस पांजी सीट थे। अच्छा अखलाक भाई तमाम भी टॉपिक जो जवाब दिनो है सैया बाबा सैया सैया हाने मां वधिक कुछ न चाहूं ना तां खबर पई थी जवाब छ। अच्छा उनके अलावा चाचा खालिद कहते हैं मुझे भी ये ओहो करना सिखाए ना, बस जैसे मैं करती हूँ ना वैसे आप किया करें साथ साथ तो आपको आ जाएगा बोल। ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछा कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। ठीक है जी, तो जल्दी से बताइए। और फहीम भाई कहते हैं कि दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा हाँ चले ठीक है, डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी आप परचेज कर सकते हैं, तो बस आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा। सुमाटू कहते हैं सलाम टू अशाद कॉलोनी कंबर खां एजाज हुसैन गोपांग इनायतुल्ला गोपांग गुल हसन गोपांग किफायतुल्ला गोपांग हुसैन अली गोपांग रहमान अली गोपांग जे नाले। अच्छा उन खां अलावा तवां गानो चयो बिल्कुल तांजो गानो लाइन था, तां बस थोड़ो सबर कजो सफा थोड़ो पितकड़ो। नसीम भाई कहते हैं कि हम नूरियाबाद से आपका शो अच्छा ठीक है वेट करते हैं और आगे ठीक है जी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बस मोहब्बतों के साथ हमारा प्रोग्राम सुना करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल किया करें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नूरियाबाद में मिलनी चाहिए और नूरियाबाद के जितने भी लोग हैं वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरतियां हासिल कीजिए और हसीन हसीन रहिए। यासीन कहते हैं कि मैं डी स्किन का शॉप लगाऊंगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, लाजमी लगाइएगा।
5: दुश्मन करे भी मार खजाती,
4: अच्छा अमदास मलिक जी गाने की फरमाइश कई जी गानों के डेडिकेट है बशीर बलोच हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम डियर आप कैसी हैं आपका शो मैं सुन रहा हूँ कराची कायदाबाद से बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद को सलाम ओके जी जी किशोर भाव हाँ तुम्हारी गाल समझी वयस बिल्कुल यो ही जवाब बड़े चलाको कसम।

तव्हांजी ॻाल्हि में ॿिन्ही जी भलाई आहे, जॾहिं तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा छो त ॿिन्ही जी भलाई हूंदी, समुझो था, तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी ऐं एॾी ख़ूबसूरती जेका तव्हां हमेशह हासिल करणु चाहियो पिया। अच्छा दर्दी दिलि, थैंक यू सो मच स्वीटी, आप हमारे साथ हैं। अब्दुल जी कैसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है मोहब्बतों के साथ। और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक कहते हैं प्रोग्राम बुधू पया आदि सिदरा, थैंक यू वेरी मच सोना भा जी। जी अखलाक भाई तव्हां ते मयार ई न, तव्हां पी बि सघो था भई। ये हाँ 1980 वाला जो ट्रेंड चल रहा है, इसने भी थोड़ा सा दिमाग खराब कर दिया है। खैर एंजॉय करने दो लोगों को। अच्छा एडी मिलानो हमारे साथ है खैरपुर मीरत से, वेरी नाइस प्रोग्राम, सलाम आप एंड सबको, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम कहते हैं।

हांजी बाबा ये न कयो ये न कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो दुश्मनन के साड़न चायो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सोना थी करे पोता पाने दुश्मनन के साड़ाए सगो था बिल्कुल ही दुश्मनन के साड़ायो ए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो नायला खान हमारे साथ की थी हाय सदरा आपी मैं आपका शो मीरपुर खास से देख रही हूँ शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज भी थैंक यू वेरी मच नायला आप हमारे साथ है नायला मीरपुर खास में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी तो आप जाइएगा परचेज कीजिएगा अच्छा रमजान भाइयों में सुन रहे हैं सलाम जी वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई आपकी बहना ठीक है आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक है खुशबाश हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में परचेज करने के बारे में क्या सोचा या अन्य तीन था मुझे गिफ्ट जी आश्रय में आयो मुझे गिफ्ट जी आश्रय में नवे हो बाबा वनो पान वी अचो

अच्छा दर्द दिल वो तो ठीक है, आपने टॉपिक का जवाब दिया, लेकिन ये तो बताएं आपने किसकी कॉपी करी है? चलिए जी, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। और ये किम यूना हमारे साथ है। किम यूना आ चुकी, कहती हेलो क्यूटी, हाउ आर यू, वेलकम मी, वेलकम कहती जी आपको दिल की अतां गहराइयों से। कहती है मैं कोरिया से हूँ और मुझे उर्दू आती है, अब बताओ मैं कौन, आप हमारी बोल दो, बोल दो टूना फिश हैं आप हमारी

हक़ीक़त आहे हिन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा पोइ त साईं वाह वाह थी वेंदी तव्हां एॾा ख़ूबसूरत थी वेंदा तव्हांजे चहिरे ते जेके डार्क सर्कल्स आहिनि रिंकल्स आहिनि एक्नी आहिनि या एक्नी जा निशानात आहिनि उहे सभु चीज़ूं ख़तम थींदियूं तव्हांजी स्किन क्लियर थी वेंदी बेदाग थी वेंदी सोणी थी वेंदी ऐं तव्हां चमकंदा वधंदा सो ग्लो करणु चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी कजो ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जी जी सबके गाने लगाएंगे टाइम से जरा इंतजार कीजिए थोड़ा सा वहीं भाई कहते हैं भाऊ मुझको लगता है हाँ तव्हां ॾिसो चवण बि वरितो त कंहिंजो चवण वरितो किशोर भाई कहते हैं कि मैं भी पैसे बचाने के चक्कर में ले नहीं रहा कोई लेकर दे तो पैसे बच जाएंगे मैं नेक्स्ट टाइम जरूर लूंगा पंखा प्रॉमिस अच्छा पंखा प्रॉमिस कर चुके हैं अब तो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट करनी पड़ेगी आपको वैसे मैं किस किस को गिफ्ट करूंगी एक को करूंगी तो दूसरा आ जाएगा तो फिर ऐसा है कि पैसे आप इतने ज्यादा मत बचाइए कोन तव्हां इन्हनि पैसनि मां बंगलो ठाराईंदा तव्हां वञो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो सही आहे

न हूंदो जेके माण्हू पैसो बचाइण जी कोशिश कंदा आहिनि ऐं कुझु पंहिंजे लाइ ख़र्च न कंदा आहिनि, पाण ते मतिलब उहे पैसो न लॻाईंदा आहिनि, त मूंखे लॻंदो आहे उनजो जेको पैसो बचियल हूंदो आहे न उहो वरी कंहिं अहिड़ी चीज़ ते लॻी वेंदा जंहिंजो उन तसवर बि न कयो हूंदो आहे। सो तव्हां थोरो कोशिश कयो, पाण ते थोरो ख़र्च कयो बाबा, खाओ पीओ सुठो ऐं दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल बि कयो, जे सोणा सोणा बि ॾेखारिजो। और ये आरजे जिमी बलोच हमारे साथ, आरजे जिमी बलोच, वालेकुम असलाम जी, आपको वेलकम कहते हैं।

0: अच्छा किम यूना कहती हैं कि मेरे बिना तो शो फीका फीका लगता होगा। जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया मैडम जी। सनाला फ्लोपोट्रो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समाटो गोपां कहते सिद्रा मेरे कॉमेंट्स। हाँ जी तमाम जो कॉमेंट्स कहते एक अगे आए हसीन बो वरी वारन जो चगू जेके रुखसारन ते खेचल कन थियो ओए तुंजे सुह के वेतल चार चंड लगाए छडन थियो। वाह वाह वाह नाइस नाइस। अच्छा सनालो फ्लोपोटो तमाके असने प्रोग्राम वणी पयो सो थैंक यू तमाजो मोहब्बतू आहे। अब्दुल गफार भाई भी असे गड मौजूद आहे लाजवाब शो। थैंक यू जी तमाजे पाड़े में भी दिसो वाइस ऑफ बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी हुंदव सो वणो ऐ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो।
1: हाजर हुन जे लए सिरु हुंदो सामो जदे मुजे दिल पर।
0: अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कारी बकरी अच्छो खीर त सुना था लेकिन काला दूध आज पहली दफा सुनाए। अला जाई हुदा कसम तो ये तां न बदो हो आईली दिसो त अज मारी सोचा भई त माई बारणो सवाल थी खणी वणा पर दिसो त मुझे लिसनर्स के त खबर ही कोने के भी चे जी। चलो हाँ तक खबर पेजी पर तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी खबर आ सो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इग्नोर न कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। और नायला कहती है आपी सिद्रा मेरी अम्मी आपका शो सुन रही है और आपको सलाम दे रही है। बहुत शुक्रिया आपकी अम्मी जान को वेलकम कहते हैं आपको भी वेलकम कहते हैं थैंक यू। जी सो गानो तो मैं एंजॉय कयो और गाने का फौरन बाद ही ऐसा मनु था बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुना उन का जल्दी मोटी तमा दे ना तमा करी ना मंजोय ते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटा मथी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कयो हाने ताजी खूबसूरती ताजी हथन में तव दिसा दी ता करे ता पानी खूबसूरती हासिल कयो वनो ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी से।

0: It's 2:30 p.m. This time...
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752640 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
3: छातवान जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंदे वडे सूर खां परेशान आयो? छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। एक आजमायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086-3163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
7: जी हा, 3615525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकर तवां के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध, हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

वाह साईं वाह उया गाल थव बिल्कुल हाँ जी भाई, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आपको कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो आप अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे, तो आप मुझे 888 फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं वो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आकर हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके बारे में तो पूरे प्रोग्राम आप लोगों को बताते रहते हैं, कोई जरा सी भी अगर कंफ्यूजन आपके जहन में हो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से जान ले, पहचान ले और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।

सो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सदराव के साथ मौजूद है। चलिए जी हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में मुखातिब हो चुके हैं, तो यहाँ पर जल्दी से आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए। तो सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, तो अगर आप डी एस कंप्यूटर क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी हमारा प्रोग्राम सुना स्टार्ट किया है, तो ऐसा कहते हैं ना हमेशा की भी खूबसूरती और खूबसूरत होना ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये दिल करता होगा कि भाई हम भी खूबसूरत दिखाई दे, हमारी खूबसूरती भी नजर आनी चाहिए लोगों को। आपके चेहरे पर जो ये निशानात आ चुके होते हैं, रिंकल्स आ चुके होते हैं, वक्त से पहले आप अपनी स्किन को देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमारी स्किन जो है काफी खराब हो चुकी है, और इसका कोई हल बताएं, इसका कोई सलूशन बताएं कि हम कैसे अपनी स्किन की हिफाजत कर सके। तो बिल्कुल जी, आपको बताया जाता है कि खूबसूरत और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि दिन का आगाज एक अच्छे से स्किन के रूटीन के साथ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे अगर आप देखें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर हम आपको बताते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जिससे आपकी ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती है। तो अक्सर आपने उन प्रोडक्ट का जो है ना वो सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिन प्रोडक्ट्स में आप लोगों को खूबसूरती भी मिले और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, क्योंकि मार्केट ऐसा भरा पड़ा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स से जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि ये गोरा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, कोई सिंपल सा कोई प्यारा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें आपके पैसे भी ज्यादा ना लगे, टाइम भी ना लगे और आपको खूबसूरती भी प्रॉपर मिलती रहे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है। जैसे कि आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो भाई इतना हसीन सा निखार हासिल कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई फेशियल करा के आए हैं, कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, या फिर कोई महंगी सी आपने ट्रीटमेंट ली है स्किन की, लेकिन ये कमाल होगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स हैं। ये दोनों जो चीजें ना, वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स, ये तमाम महंगे सारे प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है, और पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें तो बड़े खुश नसीब है, क्योंकि आपके पास भी मौजूद है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपकी खूबसूरती की हिफाजत करेगा और आप हमेशा के लिए खूबसूरत, हसीन और प्यारे हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रही है, और 2 दिनों में, सिर्फ बिल्कुल जी 2 दिनों में, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 दिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल चुके होंगे। और मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए, अपनी खूबसूरती की हिफाजत कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को जरा वेलकम कीजिए।

हां जी भाई जान, इस बात में कोई शक नहीं, ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी। फरमाइश हुई हिदायतुल्लाह अहमदानी शायदि गाने जी फरमाइश कई, बिल्कुल ॿुधो सी। ऐं हीउ वारो सॉन्ग बि ॿुधंदासीं, फरवा फरमाइश कई हुई, फरवा फरमाइश कई हुई। ओके सो तव्हांजा कुझु फीडबैक्स आहिनि मोहम्मद ज़मान भाई के ते, नाइस सॉन्ग बाए शमन, थैंक यू बुआ जी, इट्स ओके प्यारे भाई। अच्छा ये कहती है कि मैं निदड़ी हूँ रे, मैंने शो को और तुम्हें बहुत मिस किया रे, बहुत शुक्रिया रे, और आप वापस आ चुकी हैं तो आपको वेलकम कहते हैं रे।

पाके थे भाऊ असां के कडे गिफ्ट मिलंदी थोरो थोरो भला आसरो डियो मां आसरो न दींदी आया कंहिंखे बि तव्हां पाण वठो मां हमेशा तव्हांखे इहा ई चीज़ चई आहे और नसीम भाई कहते हैं कि काश आप नूरियाबाद पर आरजे होती हमारी ख्वाहिश अल्लाह मां जिंदगी में करे नूरियाबाद कोन आई बस बात आ मुखे हिते बुधो या उते बुधो गाल सागी आहे तो मोहब्बतूं ऐं तव्हांजो नूरियाबाद में तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात वठ जो मिले थी कोन अच्छा सो स्मार्टू गोपांग आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी बहुत बढ़िया प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है हेलो जी हेलो अनवर भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है बढ़िया हो गया जी परवा आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है किशोर भाई कहते हैं कि सब तुझे भाव वांगुर होशियार थोड़ी आए न बस मानू कदर नथा कन हाय ही अलग गाल आहे नन्ना कदर आए कदर करण वारन वट तांजो कदर आए एड़ी भी गाल कोने का आई चौदह जेके मानू 1980 में वनन पया हुनन के चौ थोड़ो होता संस्कार भी वठी अचन सही था चौला सही था जो संस्कार जरूरी है अच्छा मोहम्मद नूर गादी हमारे साथ है मेहड़ से आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है जनाब आपको वेलकम कहा जाता है और एहसन अली बुक्टी भाई हमें सुन रहे हैं एहसन भाई आपको भी खुशामदीद कहा जाता है मुजाहिद मलिक हमें सुन रहे हैं घोटकी से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है चाचा कहते हैं ठगियों ठगियों ते केतरा डीं हलंदो बेटा उहा ई गाल चाचा घुमी फिरी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी लगाइणी पवंदसि तो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जेके जेके अञा ताईं वेठा सोचनि था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इलाही सारो फ़ाइदो तव्हांखे मिलंदो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणी ॾिसो पोइ ईअं न चओ त सिदरा भाजी असां तव्हांजी ॻाल्हि न मञीसीं जेका डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे न हर कंहिं इस्तेमाल करे सुहिणा थी विया बसि असांखे छॾे तो तव्हां बि वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते उतां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ईज़ीली मिली वेंदी न बि मिली थी त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे हुन नंबर ते राबितो करे वठिजो सही आहे

कम्युनिटी वजीर भाई हमारा शो सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से डॉक्टर वजीर अली भाई कहते नाइस शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। सिकंदर है सालार सिकंदर, आपको खुशामदीद कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। और जी नजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली से डॉक्टर वजीर अली भाई, आपको थैंक यू कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और स्मार्टू कहते हैं सिदरा मुझे भाई मुख्य लगे तो यो तांजो ख्वाब करें भी पूरो नथी वेंदो छो त ये करें थेणो ही ना है। अच्छा रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम अदी, कारे रंग जो खीर चलो तमा जवाब दिनो आज जो मुखे थोड़ो समझ में गाल कोन आई, सो खैर ताके चोंदा भली करी आया डे स्किन ब्यूटी क्रीम वट्टी तव कोन वर्ती तव यो बुदाया जो मुखे। और ये जी अल्ताफ बलोच जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज प्ले शमन दर्द दई व्या दिलवारा मानू डेडिकेट अजरा कोसो बिस्मिल एंड यू। और कहते हैं जाग जानी प्लीज प्ले मास्टर मंजूर हर जाए प्री हर महफिल मुखे तुझी कमी महसूस थी थे डेडिकेट अजरा कोसो एंड यू। और जाग जानी चाचू कहते हैं डेडिकेट ये दूसरी फरमाइश है फरिया परवेज ए जिंदगी तुझे ढूंढू का एडा मतलब फरमाइश एकड़े प्रोग्राम में ता चाचा कहिया दोस्त ये केडी गलत गाना एको गानो मानू फरमाइश कनो डा डा गाना जी फरमाइश करी सडियो था नक्यो बाबा नक्यो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वरती तव कोन है यो बुधाए जो मुखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जे खूबसूरती में सफा इजाफो आनी सडींदी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जे चेहरे ते जेके रिंकल्स आहन या फ्रिकल्स आहन या निशानात आहन या एक्नी प्रॉब्लम आ हर तरह से तवा के महफूज रखंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल मर्द आयो खवातीन आयो हर कोई इस्तेमाल करे सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश भी अवेलेबल आहे अगर तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथा लगायो तो तवा फेस वॉश ट्राई करे सगो था मार्केट वनो मालूमात वेठो ऐं परचेज कयो।

जी जी भलो गानो आ, भलो गानो आ। अच्छा एम अली मोरो सिटी से हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम, सो स्वीट सिस्टर सिद्रा, एफएम की फूल और खुशबू, हमेशा बिखेरती रही कूंज, वहीद अली का सॉन्ग सुनाओ तेरी। अच्छा सही सही सही, हाँ तो खैर तुम गानों मत न हली सके तो तुम गानों पंज बजे वाले प्रोग्राम बुधा, ठीक है, न तो सुभा बुधी वी। और हबी बुला थेबू है सॉन्ग बुधाए जो फोजिया सुमरो, अगते तुम गानों लिखो है भाई, हिकड़ो तो मुख्य मानू बुधाए जो गाने की फरमाइश न तो करे। हाँ किशोर भाई न कही है, बाकी तो हर कोई गाने की फरमाइश तो करे, एनी फरमाइश न कना कयो, मनंडो मानू काड़ी काड़ी वना। अच्छा ये ऐसे शो हमारे साथ है खालिद आलम और मोहम्मद खान हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। चाचा तमाम जो मां पढ़ो तो सही टॉपिक वारो कमेंट।

बिल्कुल जी, खूबसूरती के मामले में कुछ लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं, और उनको जब ये पूछा जाता है कि भाई आप खूबसूरती के मामले में पीछे थोड़ा सा क्यों है, तो उनको यानी कि कहते हुए मैंने यही देखा है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमें सही गाइड नहीं किया जाता, सही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दुकानदार दे देते हैं जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन स्किन खराब हो जाती है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करने। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई आपको नहीं बता रहा है, तो आप एक मरतबा मेरे कहने पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके हर स्किन टाइप के लिए है, मेडिकेटेड फार्मूला है, और डॉक्टर्स जो होते हैं ना स्किन के, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। तो यानी कि ये चीज तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई हर तरह से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगी, हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखेगी, और हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बना देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सारे लोगों के लिए है, बस आप जाइए, परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।

जी जी बिल्कुल, मैं ये गाना जरूर सुनूंगी जब सामने तुम आ जाते हो। वैसे ये वो तो नहीं जब तुम आ जाते हो सामने, या वरी ही को बियो हुंदो मुखे ये लगे थो। तो एटीज जा गाना शायद मुँह थोड़ा बुधा है। अच्छा उन्होंने कहा लवा सनावला फुल पोटो कहते हैं आपकी। अच्छा तमा शायरी लिखी आपके दीदार पर अगर मेरा अख्तियार होता, वल्ला ये रोज रोज होता बार बार होता। आए हाय आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया बाबा, रोज रोज बार बार तहां के मजो अची वेदो। अच्छा फही

0: गानो भलो हो वाइब सुठी हसे ओके जी हाजी नजीर हाजानो भाई सऊदी अरब से हमारा शो सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाईजान को वेलकम कहा जाता है सालार सिकंदर कहते हैं कि एंड में टॉपिक के जवाब बताइएगा बिल्कुल सी बताएंगे थैंक यू आप हमारे साथ हैं और नजीर भाई हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया भाईजान आपको वेलकम कहते हैं नसीम भाई कहते हैं हमने भी दिया था क्या दिया था आपने और उनके अलावा अनवर भाई कहते हैं मोकलानी मोकलाइंदे अखिन में आया लुड़क लबंती अलविदा जो नाम हो दिल त चाहियो पए बी रहूं पर वक्त जो वो ही पैगाम हो वाह वाह वाह वाह
1: बुधो आहे मु साइडन में तू बुधो आहे मु
0: अच्छा हिदायतला कहते लगी थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे काबिल भली महबूब माणा कर ओ यही गाल केस ताई माणा कंदा हां नेठ त वठणी पवंदव डी स्किन ब्यूटी क्रीम
1: बुधो आहे मु
0: अंगदड़ी कहती लगी थो चंपन जे काबिल यह भी हकीकत कुटकी जे काबिल जी जी अनवर भा तू ये बस मोहब्बतू आन प्रोग्राम के ये चाय मोहब्बत से बुधंदा कर अच्छा फहीम भा तुम फरमाश रेडी कदा न क्यों असा के आखिर में हलानी पवंदी है नजीर खोसो भा असा बलोचिस्तान का बुधे पो मोहब्बतू प्यारे भाजू और कहते हैं पैसे कमाने में वक्त लगता है मगर उससे खोने में कभी कभी एक गलत फैसला काफी होता है और इसीलिए हर मौके को बहुत बड़ा फायदा दिखाइए जरूरी नहीं कि उसे पकड़ लेना चाहिए कभी बच्चा भी लेना चाहिए कामयाबी होती है अलाए छा हो कदे कदे तांजी थोड़ी गाल मुखे समझ में घट ही दिया है इन खा अलावा निधि कहती कि आज गिफ्ट डे है क्या सबको गिफ्ट चाहिए तुमसे क्यों भला शीजा ने शॉप खोला है क्या अगर मां दुकान खोलिया तो वाकई तहां के गिफ्ट दिया अला मुझे एडी वडी दिल पर दुकान कोने न सो तहां ने पांजी वडो

0: मुझे
1: गालियों नहीं गिलाऊं कंदी हुंदी ध्यान नहीं बुद्ध जो ठीक है डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम तोहफो न दिनो अस तो लाजमी गिलाऊं कंदी बाबा तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम तोहफो गयो पांजे प्रिय प्यारन के जी जी एतबार आ एतबार एतबार

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वाद शहरनि जी सप ख़तम करे छॾी मुसाफ़िर गाॾियुनि जे भाड़नि में ॻाटे टोड़ वाद बाद खाद खुराक वारियूं शयूं बि महांगियूं थी वयूं. लगातार पंजनि ॾींहनि पेट्रोल महांगो थियण बाद फी लीटर 375 रुपया 82 पैसा थी वियो, जॾहिं त डीज़ल बि 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर विकामण लॻो. ट्रांसपोर्टर्स बि पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब ॼाणाईंदे भाड़नि में ॻाटे टोड़ वाद करे छॾी. खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया. शहरी सख़्त परेशान. सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो.

0: वेंदो। ओमान में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमरीका खे पाबंदियूं नाकाम बंदी ख़त्म करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो त आबराहम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाद जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामतीअ बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबुल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते जी गश्त शुरू करे छॾी। बाबुल मंदब जे आम बेटनि मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबुल मंदब में हुसैन थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी अरब परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हमनसब सां फोन ते राब्तो। बतरफ़न लाॻापन समेत ताज़ी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल। इराकी परडे॒ही वज़ारत मूजिब ॿिन्ही अॻुवाणनि खिते जे तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़ कयो।
1: नमाज पढ़ने गया, पीछे से बच्ची गुम हो गई। जी जी जी। जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं, तो खिलाफ तो पीछे मिली। कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा। कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला, ना बगैर दाढ़ी वाला, ना मूछों वाला वगैरह, कोई भी साथ नहीं देगा। जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें, बगैर दाढ़ी वाले भी करें, मेरे पे एहसान करो, धक्का दो मेरे को। इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो, तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
2: इंसाफ खबर सके जो मुजरिमानों की सजा मिले। आज असा
0: टंडरो आदम मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारड़ीअ खे जिन्सी ॾाढाईअ बाद क़तल करण जो इनकशाफ़। नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार। ॾोह जो एतिरा पुलिस मूजिब अंजुम मलवासी पंजनि वरनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारड़ीअ सां ज़्यादतीअ तसदीक थी। जवाबदार कासिम कंडाणीअ खे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे। वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एहतजाज। तालका इस्पताल खे बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। इंसाफ़ जी वक़्त सिर फरहामी ज़रूरी आहे। ज़िली अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट

0: आलम और डो एसएसपी ऑफिस में डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान एसएसपी से गड़जानी करे ब्रीफिंग वरती। आईजी सिंध जो दौरो मीडिया का गुजो रखियो वो जरियन मूजिब आईजी फहमीदा केस बाबत तफसील भी वरता। आमिर ज़िया के दौर में जमहूरियत के बहाली वाली तारीख दौरान शहादत माणींदड़ की अज 43 वर्षी मलाई पई वे वारसन ए पीपी अगवाण की खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर के शहीद के मजारन से हाजिरी। शहीद के भेटा पेश पीपुल्स पार्टी के अज खैरपुर नाथन शाह में जलसो भी थियल। टंडरों मस्ती भरसा पढ़ल नारी ए नौजवान पारा पसंद के परने लाय घर बार निकरी नारी के वारस नौजवान घर के बाय डे छी। जवाबदार अमजद फुलपोटो के घर ए दुकान के बायू डेई छो। इलाके वासन मूजिब अमजद फुलपोटो घरवारी के भाटे की जाल से निकरी वो है। नारी के वारस इल्जाम मड़ियों अमजद फुलपोटो नारी के अगवा किया। सखर में सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ पीपुल्स लॉयर्स फोरम की रैली वकीलन हाईकोर्ट बार का रैली कढ़ी शहर जो गश्त कर अगवाणन चयो ता सिंध के ट्रोण मुल्क के कमजोर करण जे बराबर आए। 1947 का मुल्क में 4 सूबान वधिक सूबन वारो राग बंद कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना

0: एक है मुसलसल।
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125257866।
1: जी हा 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा आवां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सिंध ते का अड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पान में भाकुर जूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोबत कड न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरायूं जान में।

0: में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िशान चयो आहे त अरब मुल्कनि जे सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे। इस्माइल बकाईअ चयो आहे त अबनाए उरम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाद जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबुल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबुल मंदब जे आम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा। यमनी फ़ौज चयो आहे त मुख ऐं बाबुल मंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़ामत। हमला खिते जे अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार। सऊदीअ सां गॾु बीहण वारे अज़म जो वर्जा परॾेही तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइन ते ड्रोन हमलनि सबब शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। हमले सां खिते जो अमन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो। मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे। नवनि सूबनि जे हवाले सां आवाम खां बि राय वरिती वेंदी। पीपुल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदअमल ॾिनो। सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाला चयो त वफ़ाकी घरू वज़ीरनि सूबनि वारे मामलनि ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में न आहे ॻाल्हायो। वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी न आहे।
1: कंदो रात मुंहिंजी घरवारीअ जी डिलीवरी यकीन कंदो मां गाॾीअ वारे ॾे वियुमि। मां हुनखे चयो डिलीवरी मसलो हलूं खैरपुर, चई पेट्रोल महांगो थी वियो आहे, 3000 रुपया किरायो वठंदो मां खैरपुर ताईं। आख़िर तड़पी तड़पी जेको हुनजो ॿार होत थी अहिड़ो असां सां न कई हशर।
2: माण्हुनि जो जीअं जंजाल थी वियो आहे, गाॾी कढण जहिड़ा कोन माण्हू परेशान लॻा पिया।
3: अवामी तेल चुंगी थी वई आहे, ग़रीब माण्हू परेशान आहिनि, ख़ुदकशियुनि ते मजबूर आहिनि।
4: महांगाई जो जेको भूत आहे बोतल मां निकिरी आयो आहे, गरीब माण्हू केॾा
5: वञनि। भुख ते मरनि था, 500 कमायूं था, 500 पूरा ई न आहे। ते हुकुम सां वोट ॾेई असां गरीब फासी विया आहियूं।
6: ड्राइवर आहियूं, असां ते वॾा असर पहुची विया आहिनि। असांजो रोज़गार बंदि थी वियो आहे।
7: असर बुरो आहे,
8: दाल चढ़े थी, सब्जी ॾिसो चढ़े थी, गिहु चढ़े थो, अटो ॾिसो 30-20 रुपया 40 रुपया थी वियो। केरु गरीब माण्हू कालो वठंदा।
0: पेट्रोल जे अघनि में ॻाटे ट्रोड़ बाद शहरनि जी सहप ख़तम करे छॾी। मुसाफ़िर गाॾियुनि जे भाड़नि में ॻाटे ट्रोड़ बाद खाध खुराक वारियूं शयूं बि महांगी थी वियूं। खाध खुराक वारियुनि शयुनि जा अघ बि वधी विया। शहरी सख़्त परेशान। सखर में शहरी इताद जो एहतजाज। अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो। पेट्रोल महांगो थियण सबब अटो 30%, खीर 8%, मिर्च 16%, बसर 150%, गोश्त 15%, डबल रोटी 8% महांगी थी वई। शुमारियात खाते महांगाई वधण जी तसदीक कंदे चयो आहे त बिजली 25%, LPG 50% महांगी थी वई आहे। पटाटा, मुर्गी, बेज़ा ऐं खंडु सस्ती थी आहे।

0: थियल ॿारीअ खे जिंसी ॾाढाई बैदि क़तल करण जो इनकशाब, नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार, ॾोह जो एतिराब। पुलिस मूजिबि अंजम मलवासी पंजनि वरियनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो त ॿारीअ सां ज़्यादती तसदीक थी। जवाबदार कासिम कुंडाणीअ गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो एतिराब कयो आहे। वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एतिजाज़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू है।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो जी।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: केश किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जू पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी। छा अमा चायो था अमा जे घरन जू छितू पक्यू हुजन त केश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐ सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
1: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
1: जी हाँ 2311-25-25-786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: To us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
4: ओसियन फोन ते ॿुधायो आहे त अमेरिका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन्स ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो. सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीक थी वेंदो. सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे. अपना हरमुस ते कंट्रोल अमेरिका जो आहे. अमेरिका जारियत बंद करे त अपना हरमुस खुली वेंदो. अमान अमान में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआहिदे ते सहियूं थींदियूं. ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि. अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़त्म करणु घुर्जे. इस्माइल बकाई चयो त अपना हरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे. तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे. सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा. ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी महिता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं.

पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत, हमला खिते जे अमन इस्तेकाम लाइ ख़तरो करार। सऊदी सां गॾु बीहण वारे अज़म जो वर्जाओ। परडेही तर्जुबान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि। हमलनि सां ख़िते जो अमन ऐं इस्तेकाम मुतासिर थी सघे थो। मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे। नवनि सूबनि जे हवाले सां अवाम खां बि राय वरिती वेंदी। पीपल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदअमल ॾिनो। सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नवनि नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर सूबनि वारे मामले ते काबीना तोड़े पार्लियामेंट में नाहे ॻाल्हायो। वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी नाहे।

0: इंतजार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाड़ी वाला दे बिम मा उने के जब डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल मांगो थीया 3000 रुपया किराया वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: मानु जो जीण जंजाल थीया गाड़ी कढन जेड़ा कोन मानु परेशान लगा पया
2: आवामी चे लुकी थी आए भाई मानु परेशान खुदी पेशन ते मजबूर है
3: महंगाई जो जको भूत आ बोतल मां निकली आयो गरीब मांग के दा
4: पचा सडा भूख ते मरण ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है ते हुकम ता सोट देई अस गरीब फांसी आयो
5: थी रेवर आयो ते वडा असर पोजी आ ना सा जो रोजगार बंद थियो आ
6: असर बुरो आ जायो पाव दा ओटो असर जुमा जोडी रोयो ता मा अल्लाह जो बात ते ता दे मा अल्लाह के
7: दाल चढ़े थी सब्जी दी सोचे थी के चढ़े तो अटो दी तो छोटी 20 रुपया 40 रुपया थियो केर गरीब मानु कालो वठना
8: पेट्रोल जगन में घाटे टोड़ बाद शहरियन की सब खत्म कर छी मुसाफिर गाड़ियन के भाड़न में घाटे टोड़ बाद खाद खुराक वारी शयूं भी महंगी थी वयूं खाद खुराक वारे शहर जा अघ भी वधी विया शहरी सख्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाजो भी कढ़ियो वियो पेट्रोल महंगो थियण सबब अटो 30% खीर 8% मिर्च 16% बसर 125% गोश्त 15% ऐं डबल रोटी 8% महांगो थी वई शुमारियात खाते महांगाई वधण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25% LPG 55% महांगी थी आहे पटाटा मुर्गी बेज़ा ऐं खंड सस्ती थी आहे

0: 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
1: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03132525786
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

मेरे तमाम सुनने वाले लिसनर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जी फॉर इमीडिएट सक्कर की तरफ से प्यार भरा सलाम। तो जी जनाब, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बखर आफियत से मुस्कुराते हमेशा की तरह आप लोग आज भी मेरे साथ होंगे। तो जी जनाब, मैं हूँ आप सबकी अपनी प्यारी सी और उसी आवाज के साथ आपकी प्यारी प्यारी सी आरजे कोमल खान। इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी एफ एम सखर से, और प्रोग्राम हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आवाज का रिश्ता। जी बिल्कुल, आवाज प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में मैं हूँ आप सब की अपनी आरजे कमल खान, और आवाज का रिश्ता दिल से दिल तक। जी बिल्कुल, आवाज का ही तो रिश्ता होता है, आवाज से ही तो रिश्ते बनते हैं। इस तरीके से आपके साथ रहूंगी मैं और पूरा पूरा हम लोग टाइम देंगे आज शाम 5 से शाम 7 बजे तक मैं आप लोगों के साथ ही साथ रहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे, जिधर होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, कमेंट्स करके प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी शमूलियत के बारे में बताएंगे कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। अच्छा जी जनाब, तुम्हें तरफ से तो पहले तुम्हें एक चीज कहना है कि आप लोग को शाम बखैर। लोग सुबह में आते हैं, मैं शाम में कहती हूँ भाई शाम बखैर मेरे तमाम लिसनर्स को, पैर पैर लिसनर्स को, क्योंकि इस वक्त 5 बजे का टाइम है और ये टाइम कोई बिजी नहीं, तो हर कोई फ्री होने लगता है। शाम का टाइम है, ठंडा ठंडा टाइम होता है। इस वक्त सब अपने अपने घरों की तरफ रवा तमा होते हैं, चाहे वो इंसान हो, शहरिंद हो, परिंद हो, या फिर कोई भी जानदार, वो अपने अपने मंजिल की तरफ, अपने रस्ते की तरफ रवा दवा होते हैं। कोई ट्रैवल में सफर करके दौरान मुझे सुन रहा है, वो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। कोई घर में है, कोई ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा है, या फिर बच्चे हैं जो ट्यूशन जा रहे होते हैं, अकेडमी जा रहे होते हैं, कोई नहीं भी जा रहे होते। तो जैसे जहाँ पर गर्म भी सुन रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ आवाज का रिश्ता। जी बिल्कुल, शाम को इस टाइम और इंसान के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो भी नए भाई दुनिया में, और उनके साथ साथ ये जो एक सूरज है वो भी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। दुनिया का एक निजाम, एक कारवा अपने टाइम पर अपनी मंजिल की तरफ सब चल रहे हैं। वही चीज है कि आज जिसे खत्म, आज सूरज डूब रहा है, लेकिन वो हमें एक उम्मीद देकर जा रही है कल मैं फिर आऊंगा, वो फिर आएगा। तो इसी तरीके से हमारी भी उम्मीदें होती हैं बहुत सी, लेकिन हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए, क्योंकि वही पूरा करते हैं। इंसानों से लगाई हुई उम्मीदें जो है, इंसान हम कहते हैं ना कि हमें धोखा मिलता है, तो भैया इंसान से उम्मीद लगाना, जिसको पता ही नहीं आपने उससे क्या उम्मीदें लगाई हैं।

उसी जनाब आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जी एस 98 सखर से, और इसके साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, जी एस 98 की पेज पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी जो है हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। इसके अलावा आप मुझे SMS कर सकते हैं, आपने कोई शायरी, कोई पोएट्री, कुछ भी ऐसा शेयर करना या अपनी कोई कहानी, क्योंकि शाम का टाइम है और अक्सर शाम में उदास होती है और ये दिन भी कुछ उदास उदास वाले ही चल रहे हैं अब आजकल देखा जाए तो, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद शुरू होने वाली, गर्मियों का अब मौसम जाने वाला है, तो ये उदास शामें होती हैं, कुछ लोगों के लिए उदास हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए खुशगवार, लेकिन उदास इसलिए जरूरी नहीं कि कोई एक ना खुशखबर वाक्य है, मेरी जिंदगी को उदास कर अच्छी यादें भी हमें समय उदास कर जाती हैं। तो जी बिल्कुल, आज की शाम भी हम ऐसे ही कुछ नाम करने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी बात कहूंगी उसके बाद चले चीजें कि आज की शाम हम करते हैं कुछ यादों के नाम, ठीक है ना। हम हर शाम कोई ना कोई किसी न किसी के नाम करेंगे, तो आज हमने कुछ यादों के नाम कर दी, वो यादें जो वो बातें जो हमारी जिंदगी की आज यादें बन चुकी हैं, कल वो हमारा गुजरा हुआ कल थी, एक टाइम वो हमारा प्रेजेंट थी, पहले फ्यूचर थी फिर प्रेजेंट थी, अब वो हमारा माजी बन चुकी है और वो हमें यादों में रह गई हैं। तो ये बिल्कुल जिंदगी में कुछ शामें ऐसी होती हैं ना जो हम कभी नहीं भूल पाते, और कुछ शामें बिल्कुल मतलब कि वो ऐसी यादें ना उसे कुछ याद करने की खास वजह होती है ना कोई बड़ी वजह, लेकिन फिर भी हमें याद होती है क्योंकि वो खुशगवार लम्हे होते हैं। तो हर वक्त हमें सिर्फ एक ना खुशगवार वाक्य लम्हों को याद नहीं करना चाहिए, अच्छे लम्हे भी जिंदगी में गुजरते हैं उन्हें भी याद रखना चाहिए, बस वो शामें दिल में उतर जाती हैं। कभी किसी अपने का फोन आ जाना और आज ये सोचना कि अब वो फोन नहीं आता, वहां उस नंबर से मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आता, हम शाम के इस पहर बैठकर उनसे बातें करते थे, कभी वो हमारे सामने बैठे होते थे, कभी आज वो हमारे लिए याद बन चुके हैं। वो कोई भी शख्सियत हो सकती है, कोई इंसान हमारी जिंदगी में खास, हमारा दोस्त, हमारा अपना रिश्ता, कोई करीबी, शायद आज वो किसी दूसरे शहर में दूसरे मुल्क में है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे उनके गुजारे हुए लम्हे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हम उनसे नहीं मिल पाते, कोई रब्ता कुछ नहीं होता, तो बस एक अच्छे लम्हे उनके साथ गुजरे हुए याद रह जाते हैं, हमें वो याद रखने चाहिए, और वो शामें हमें याद दिलाती हैं कि इनके साथ गुजरे हुए लम्हे ऐसे थे जो कभी हम भूल ही नहीं सकते। बहुत सी ऐसी शामें होती हैं आपने किसी फ्रेंड के साथ गुजारेंगी, कहीं कैफे में, कहीं रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस में हंसी मजाक करते हुए चलते हुए कि लम्हे में आपको वो चीजें वो वक्त रहते, सम टाइम एक कप चाय आपको किसी की याद दिला जाती है। तो जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें करते रहेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा ट्रैक अपने तमाम सुनने वाले लिसनर्स के नाम करना है। तो जी बिल्कुल, मैं एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आप सब मेरे साथ सुनिए, नवीन शक्कत की खूबसूरत आवाज में जिंदगी ए जिंदगी, जी बिल्कुल मैं प्ले कर चुकी हूँ, आप लोग भी इसको एंजॉय करें मेरे साथ।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अगले जनाब एक बार फिर से आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ आवाज क्या रिश्ते में। जी बिल्कुल, आवाज का रिश्ता, जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता, दिल से दिल तक का। तो जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ और इस वक्त अपने शाम 7 बजे तक आपके साथ ही रहेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कुछ यादों के ऊपर, उसके बाद ऐसे से ड्रैग मैंने चलाया था, साथ साथ हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप लोगों के जहन में कोई बात है, कोई टॉपिक है, आप लोग अपना जो कोई भी टॉपिक शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ लाजमी शेयर करें, फिर हम कल भी उसको उसी टॉपिक पर बात करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा जी, तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और आज का मेरा आप लोगों से, अपने तमाम चाहने वाले लिसनर से, सुनने वालों से, जो सुन रहे हैं मुझे, मेरे चाहने वाले उन सबसे है कि जी बिल्कुल, अच्छा जी, आपकी जिंदगी की कोई शाम, कोई कहानी, कोई वाकया, कोई लम्हा ऐसा जो आज जो आप हर शाम याद करते हो, क्या आपके माइंड में ऐसी कोई बात है जो अपनी कहानी आप शेयर करना चाहें, तो वो चंद अल्फाज में आप लिख सकते हैं किसी शायरी में, कोई छोटे से पैराग्राफ की सूरत में आप मेरे साथ लाजमी शेयर करें, फिर वो मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूंगी। क्या पता आपकी कहानी से किसी की कहानी मैच हो जाए, किसी को कोई सबक मिल जाए, कोई उम्मीद या कोई माजी की गलती से जिससे आप चाहते हैं कि अगले ये गलती ना करें वो कर जाते हैं तो आप उनको रोक सकते हैं। तो जी, भी छोटी सी नेकी होती है, अपने साथ का तजुर्बा दूसरों से जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए आपका मशवरा। अच्छा जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि हर कोई अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है, चल रहा होता है, हर किसी को कि हम जल्दी से अपने सफर, अपनी मंजिल, अपने घर पानी, कोई घर जा रहा होता, कोई किसी से मिलने, कहीं भी कोई जहां भी उनका मकाम, उनकी एक मंजिल होती है, वहां उन्हें जल्दी होती है कि पहुंच जाए, खासतौर जो मुसाफिर होते हैं ना वो यही चाहते हैं। अच्छा जी, तो इसी जो है शाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हर डूबता सूरज हमें सिखाता भी है और दिखाता भी कि कल एक और नया सवेरा है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो जी बिल्कुल, डूबते सूरज को देखना किसी शाम के पहर अक्सर छत में या बाहर कहीं पर, अक्सर ऐसी जगह पर होता है कि लोग बैठे होते हैं, किसी को सनसेट व्यू बहुत पसंद है, जैसे लाइक मुझे बहुत पसंद है सनसेट व्यू, खासतौर रिवर बैंक, मतलब रिवर ऑफ बैंक, तो इस साइड पर दरिया के किनारे, समुन्द्र के किनारे अगर चाहें तो मुझे वो व्यू बड़ा अच्छा हसीन लगता है। तो आज मैं अपनी वही बात आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और साथ साथ कमेंट्स भी आ चुके हैं, हमारे लिसनर जो टाइम निकाल कर आते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बिल्कुल, डूबते सूरज को देखना दरिया के किनारे बैठकर या समंदर के किनारे बैठकर, वो खामोश शामें जहां लहरों की आवाजों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

आप एक बार फिर से आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में। चलिए जनाब, आप लोग जाने से पहले एक अच्छा सा ब्रेक जाने से पहले मैंने एक अच्छा सा सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले किया था, हारी हारी। तो जी बिल्कुल, देखिए जनाब, प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं। तो जी बिल्कुल, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा रहता है हमेशा की तरह। अच्छा जी, तो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी, तो मैंने कहा चलें वो भी शामिल करें, फिर एक अच्छा सा जो सॉन्ग होता है वो प्ले करूंगी अपने लिसनर्स के लिए। हाँ तो जी, हमने सबसे पहले ज्वाइन किया था साबतपुर से थे, बलोचिस्तान से नजीर खोसो साहब, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और ये हमारे बहुत अच्छे से लिसनर्स हैं। ये हर शो में, मतलब हर किसी के शो में शामिल होते हैं और रहते हैं, मेरे तो हर शो में शामिल होते हैं। अच्छा जी, इन्होंने एक अच्छी सी बात लिखी है, मैं प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि पैसा कमाने में वक्त लगता है मगर उसे खोने में कभी कभी एक गलत फैसला काफी होता है। इसलिए हर मौके पर जो बहुत बड़ा फायदा दिखाए जरूरी नहीं कि उसे पकड़ लेना चाहिए। ये फ्राज इनका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने लिखा है कभी बेचारा बिना भी कामयाबी होती है, शायद ये कुछ ऐसे लिखना चाह रहे थे, पहले टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने सबको सलाम कहा है। तो जी बिल्कुल, मैं तो सबको आपको सलाम। और चलते चलते चलते थोड़ा सा टाइम में चलते चलते मेरा मतलब है कि प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अभी हम नहीं चाह रहे, अभी हम यहीं पर हैं, ठीक है ना। तो आवाज के रिश्ते में आप आरजे कमल शाम 7 बजे तक आपके साथ रहेगी और आप भी मेरे साथ होंगे, उम्मीद करती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ही अब्दुल रजाक साहब हैं और ये कहते हैं मोहम्मद खान और बेवफा जमान, और ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है थालीपोटा स्टॉप से, प्रोग्राम सुन रहे हैं ये हमारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा शो सुन रहे हैं। ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कमल खान, कैसी हैं आप बहन। तो जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम कमल खान, हमेशा की तरह शाद बशाद खुश खुर आप लोगों के साथ, और आप लोग को भी यही दुआ देती है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, प्रोग्राम में एक और सॉन्ग प्ले करती हूँ, वरना बोलिए कमल खान बातें करती है, सॉन्ग कम प्ले करती है। तो जी बिल्कुल, एक और मैं सर अली बागर अहमद की खूबसूरत सी आवाज में ये ट्रैक प्ले कर चुकी हूँ कोक स्टूडियो का, मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें मलंग। थोड़ा सा ऐसा भी म्यूजिक होना चाहिए ना, हर वक्त इंसान को सैड भी नहीं रहना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी गुजारें।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: And they don't want to fight with us. They let us know. They don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
4: ओसीएन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो. सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो. सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे. अपना हरमुस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे. अमरीका जारियत बंद करे त अपना हुरमुस खुली वेंदो. अपना हुरमुस बाबत सूमर ते ओमान सां माहिदनि ते सहियूं थी वेंदियूं. ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि. अमरीका खे पाबंदियुनि ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे. इस्माइल बकाई चयो त अपना हुरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे. तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे. सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा. ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी महिता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं. यमन जे हुसैन बाबुल मुंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो. बाबुल मुंदब जी अहम बेट मेवन ते कब्ज़े जी दावा. यमनी फ़ौज चयो आहे त मखा ऐं बाबुल मुंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे. पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत. हमला ख़िते जे अमन ऐं इस्तेकाम लाइ ख़तरो करार पढ़े तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि. हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि. हमलनि सां ख़िते जो अमन ऐं इस्तेकाम मुतासिर थी सघे थो. मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे. नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे. नवनि सूबनि जे हवाले सां अवाम खां बि राय वरिती वेंदी. पीपल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रते अमल ॾिनो. सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी. वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर सूबनि वारे मामले ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में नाहे ॻाल्हायो. वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी नाहे.

0: वार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाड़ी वाले दे विम मा उने के चबा डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल महंगो थी आ 3000 रुपया किराए वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: आनु जो जी जंजाल थी आ गाड़ी कढन जेड़ा कोन मानु परेशान लगा था
2: अवामी के लोग भी ये आए भाई मानु परेशान खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो जो भूत आ बोतल मां निकली आयो गरीब माऊ के ना
4: पचास साल जा भुखते मरण था 500 कमायो था 500 पूरा ही ना है ते हुकूमत सा वोट दे अस गरीब फांसी आयो
5: सी रह वर आयो असा ते वडा असर पोजी आयो असा जो रोजगार बंद पियो आ
6: अच्छा भी बुरा आ जायो पावे जा वडो असर आ जुलम ना जो नी रोयो ता मा ला जो बात ते ता दे मा ला के मु
7: दाल चढ़े थी सब्जी दी सो चढ़े थी के चढ़े तो अटो दी तो छोटी 20 रुपया हो 40 रुपया दी केर गरीब मानू कालो वठना
8: पेट्रोल जगन में घाटे टोड़ वाद शहरी जी सब खत्म कर छी मुसाफिर गाड़ियों के पाड़न में घाटे टोड़ वाद बाद खाद खुराक वारियों शयू भी महंगियों थी वयू खाद खुराक वारियों शयन जा अघ भी वधी विया शहरी सख्त परेशान सक्कर में शहरी ताद जो इतजाज अलामती जलासो भी कढ़ी वियो

0: पेट्रोल महांगो थियण सबब अटो 30% खीर 8% मिर्च 16% बसर 125% गोश्त 15% डबल रोटी 8% महांगो थी वई। शुमारियात खाते महांगाई वधण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25%, एलपीजी 55% महांगी थी आहे। पटाटा मुर्गी बेज़ा ऐं खंड सस्ती थी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
1: जी हाँ, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

जी बिल्कुल, आवाज के रिश्ते में एक बार अपने तमाम सुनने वाले लिसनर्स को मेरी तरफ से वेलकम। तो जी बिल्कुल, जहां आवाज वहां रिश्ता, दिल से दिल तक का। तो आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के अल्फाज को यहाँ आवाज दी जा रही है। आप लोग अपने ख्यालात, अपने साथ साथ अल्फाज की शक्ल में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आप लोगों की अल्फाज, आप लोगों के अल्फाज आपकी आवाज बनकर यहाँ पे शामिल करूंगी। तो जी जनाब, हम लोग बात कर रहे थे शाम के हवाले से, किस्सों कहानियों के हवाले से बातें होती रहेंगी। तो जी प्रोग्राम में भी एक अच्छा सा एक कोर ट्रैक जो है मैं प्ले करने जा रही हूँ। भाई मैं सेट सॉन्ग नहीं कर रही इतने प्ले, वरना सब बोलेंगे कॉमन तो सेट सॉन्ग ही प्ले करती है, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश होती है और कुछ अपने अपने मिजाज के हिसाब से, तो मुझे स्लो म्यूजिक थोड़े से अच्छे लगते हैं, सेट भी अच्छे लगते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर चुकी हूँ अपने तमाम लिसनर्स के लिए। नाजिया हसन की खूबसूरत सी आवाज में, जी बिल्कुल, ये खूबसूरत सी सिंगर थे, इनकी इतनी आवाज सुरीली थी, इसका जादू आज भी लोगों के समाज से टकराता है, उनके चाहने वाले उनके मदाओं के दिल में आज भी जिंदा है। जिसे इनकी आवाज आज मैं सुनती हूँ, बड़े शौक से इनके सॉन्ग पसंद है, दिल की लगी कुछ और भी। तो आई होप मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे आवाज के रिश्ते में ये खूबसूरत सी आवाज नाजिया हसन की, जो मैं शामिल कर चुकी हूँ।

तो जी बिल्कुल, आप लोग जो है प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ साथ एक अच्छा साइको ट्रैक भी प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले ये मैसेजेस शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, अब्दुल रजाक साहब हमें सुन रहे थे। अच्छा जी, इन्होंने एक शायरी, अच्छा इन्होंने एक शायरी कह सकते हैं बकौल उनकी जबान में, तो अब्दुल रजाक साहब जो हैं अपने किसी चाहने वाले किसी दोस्त के नाम कर रहे हैं। तो जी इन्होंने लिखा है कि पैसा कमाने में वक्त लगता है, मगर उसे खोने में कभी कभी गलत फैसला काफी जरूरी नहीं जरूरी होता है, या उसे पकड़ लेना चाहिए कभी। शायद इनकी टाइपिंग गलत हो चुकी है, रह गई है। बहरहाल जो भी है, आपका मैसेज हमने मोहम्मद अली तक पहुंचा दिया है। कन्हार आपके जो भी चाहने वाले हैं, आपके अजीज जो हैं, उन तक हमने आपके अल्फाज जो हैं वो पहुंचा दिए हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया था गुलाम हैदर गुलभुट्टो ने, और ये कासिम गोड मीरपुर, अच्छा खैरपुर मीरत सिंध से हैं। अच्छा जी सक्कर वाला, ये तो हमारे पड़ोसी हैं। हाँ जी, तो जी बिल्कुल, आप तो हमारे पड़ोसी हैं खैरपुर मीरत से। तो जी आप सबको वेलकम करती हैं अपने प्रोग्राम आवाज के रिश्ता में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और एक अच्छा सा ट्रैक, एक अच्छा सा सॉन्ग जो है बलोची बुक्टी ब्रदर, वो मैं प्ले कर रही हूँ आप सबके लिए। समझ तो गए होंगे कौन सा प्ले किया है मैंने। जी बिल्कुल, एनाज हंसने वाला, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। इसका म्यूजिक बड़ा कल्चर, एक म्यूजिक है सकाफती म्यूजिक, इसमें इस्तेमाल किया है। ये धुन जो है बड़ी अच्छी लगती है इसकी। चलें जी जनाब, मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करें ए नाज हंसने वाला। आवाज के रिश्ते में एक और खूबसूरत सी आवाज बुक्की ब्रदर्स की हमने शामिल कर दी है।

ओके जी जनाब, आप लोग सुन रहे थे बुक्टी ब्रदर्स की खूबसूरत सी आवाज प्रोग्राम आपके रिश्ते में। अब टाइम हो चुका है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहेंगे आवाज का रिश्ते में।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और डी कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
5: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: बल बल पढ़न दे यार सजन दी हूं दिसा कु जुदाई मुस्लिम विचों काफर थीवन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था त तू पहले महबूब सम्मेलन न वन तुझा दुश्मन टोखे होते तुझा वेरी मारे वेजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थो डजा बहरहाल महबूब जो दीदार जरूर करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

हुकूमत केर बि रोके नथो सघे। पीपुल्स पार्टी मामले ते ज़रूरत खां वधीक रद्द अमल ॾिनो आहे। एमक्यूएम सिंध जे विरहाङे जो रिंगट बंद न कयो। एमक्यूएम पाकिस्तान जे चेयरमैन ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी चयो आहे त सूबे जे विरहाङे खे गदारी करार ॾींदड़ सभ खां वॾी गदारी आहे। असांजा वॾा लॾपॾाण करे क़ाइदे आज़म जे पाकिस्तान में आया हुआ। ख़बर नाहे कंहिं उन्हनि खे भुटो जे पाकिस्तान में धिके छॾियो। अॼु कराचीअ जी आबादी 2 करोड़ खां वधीक आहे। समूरे मुल्क में आबादीअ जे हिसाब सां सूबा ठहिण घुर्जनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो चवणु हो त मौजूदा निज़ाम में मुल्क नथो हली सघे। हू कंहिं बि फोरम ते कंहिं बि वक़्तु सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। अवाम खे अख़्तियार ॾियणो पवंदो त जंहिंखे पसंदि न करे उन खे हटाए सघे।

0: सिंध के दरपेश आइनी मौशी ऐं आबी चैलेंजिस बाबति सिंध यूनाइटेड लायर्स फोर्म जो कराचीअ में सेमिनार। सूबे जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। सैयद ज़ैन शाह ख़िताब कंदे चयो त हुकुमरान सिंध खे टुकड़ा करे वसीलनि ते कब्ज़ो करण चाहिनि था। कैसर बंगाली चयो त सिंध खे इस्लामाबाद सां थींदड़ मुआहिदनि ते अखियूं खोलण घुर्जनि। आमिर नवाज़ वड़ाए चयो त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहिद आहिनि। बैरिस्टर सलाउद्दीन चयो त पीसीबी चेयरमैन मुल्क खे क्रिकेट वांगुर समझी रहियो आहे। सूबनि खे विरहाइण जहिड़ा गैर संजीदा ऐं नवां तजुर्बा करण बदिरां मसइलनि जो हल ॻोल्हियो वञे। अब्दुल हसीब जमाली चयो त सिंध पाकिस्तान जी क़याम लाइ किरदार अदा कयो, जंहिंजो क़दुरु करणु घुर्जे। वहाब शर चयो त क़ौमी असेंबलीअ खे बि सूबनि जे विरहाङे जो अख़्तियार नाहे, साज़िशनि जो ख़ात्मो आंदो वञे। सिंध जे मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते ग़ौर वीचार लाइ सिंध असेंबलीअ जी 12 रुकनी ख़ासि कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। एम क्यू एम जमात इस्लामी ऐं पीटीआई तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो। कमेटी सरबराह ज़ायल हसन लंजार चयो त मकानी निज़ाम बाबति एम क्यू एम जो बिल नाहे आयो, असेंबली जी इजाज़त सां ई उन ते ग़ौर कयो वेंदो आहे। नओ चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतिज़ाम हवाले थी वेंदा आहिनि। एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोज़ाने जे मामला ॾिसी सघंदो। एम क्यू एम जे तहा अहमद चयो त दांदली ऐं जाली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी कई पई वञे। जमात इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर सां इतफ़ाक़ नथा कनि, अहिड़ी तरमीम आई त अदालत जो दरवाज़ो खड़कायो वेंदो। पीटीआई जे शबीर कुरैशी चयो त अणचूंडियल नुमाइंदनि खे यूसीअ में विहारणु मुनासिब नाहे, अणधुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कया वञनि।
1: We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called, and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
0: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन ते हमलनि जो ज़िमेवार बि ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, आबनाए हुर्मस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे। अमरीका जारियत बंदि करे त आबनाए हुर्मस खुली वेंदो। आबनाए हुर्मस बाबति सूमर ते ओमान सां माहिदे ते सयूं थी वेंदियूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि, अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो त आबनाए हुर्मस जो
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News.

0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट आर

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचण सख़्तु सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287 सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331-2525-786
6: जी हा 2331-2525-786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो कीअं छो ऐं छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ बीमार थियो इहो किसो तव्हांखे आ सही करे थो ॿुधायां आश्क वेचारो जड़ बीमार थियो पंहिंजे माइटनि ऐं दोस्तनि खे चई त मूंखे पंहिंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आउं उते मरंदुसि जो मुंहिंजो महबूब मुंहिंजो कुल्हे कांधी थिए

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 8 p.m. This project is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमेरिका सां जंग नथा चाहिनि. जहाज़नि खे बि घुसण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन्स ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो. सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीक थी वेंदो. सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे. अपना हर मुस्ते कंट्रोल अमरीका जो आहे.

अमेरिका जारियत बंद करे तो अपना हरमुस खुली वेंदो अपना हरमुस बाबत सूमर ते ओमान सा वायदो ते सहीयूं थी वेंदियूं। ईरानी सदर मसूद पेजिश्यान चयो आहे त अरब मुल्कन जी सरजमीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमेरिका खे पाबंदियुनि ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे। इस्माइल पकाई चयो त अपना हरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जी हुसियन बाबेल मुंडब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आपी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबेल मुंडब जे अहम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा। यमनी फ़ौज चयो आहे त मखा ऐं बाबेल मुंडब में हुसियन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे जंहिं दौरान हुसियन जो वॾो नुक़सान थियो आहे।

0: वफाकी हुकूमत नवनि सूबनि वारे मामले ते मुल्क में रेफरेंडम करण जो इशारो ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त नवनि सूबनि जे हवाले सां फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी, कड़ियल पार्लियामेंट मंज़ूरी ॾिनी त हुन खां पोइ रेफरेंडम थींदो। हुकूमत अकेले सिर इहो फ़ैसिलो नथी करे सघे। मुस्लिम लीग नून समेत सभई पार्टियूं पार्लियामेंट जे फ़ैसिलनि खे तस्लीम कंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनावला चयो त इकोनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबनि वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो। अवाम नवां सूबा चाहे थो त केर बि रोके नथो सघे। पीपल्स पार्टी सूबनि वारे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रद्द अमल ॾिनो आहे। एमक्यूएम सिंध जे विरागे जो रिंगट बंद न कयो। एमक्यूएम पाकिस्तान जे चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो आहे त सूबे जे विरागे खे गद्दारी करार ॾींदड़ सभ खां वॾी गद्दारी आहे। असांजा वॾा लॾ पलाण करे क़ाइद अज़म जे पाकिस्तान में आया हुआ, ख़बर न आहे कंहिं इन्हनि खे भुट्टो जे पाकिस्तान में धिके छॾियो। अॼु कराची जी आबादी 2 करोड़ खां वधीक आहे। समूरे मुल्क में आबादी जे हिसाब सां सूबा ठहण घुर्जनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त मौजूदा निज़ाम में मुल्क नथो हली सघे। हू कंहिं बि फोरम ते कंहिं बि वक़्तु सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। आवाम खे अख़्तियार ॾियणो पवंदो त जंहिंखे पसंदि न करे उन खे हटाए सघे।
1: ये जो कागजात का जो ड्रामा आया ये 4 महीनों से चल रहा है। आपने देखा होगा बजट इजलास में भी ये ड्रामा हुआ, तब से लेकर कहा गया है कि भाई इसको तोड़ेंगे जिनके लिए मौके वतन है, ये तो कोई जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जो खाया है, जो कब्जा किया है कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें, ये आपके इस रेजुलेशन में गुम न करें कि जो आपने देश किया है जमीन वापस करें, तो हमारा लैंड वापस करें।

0: पंहिंजे बदानी पुठ
1: सिंध खे दरपेश आइनी मुआशी ऐं आबी चैलेंजेस बाबति सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम जो कराची में सेमिनार। सूबे जे इम्कानी विरहाङे खे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। ज़ैन शाह ख़िताब कंदे चयो त हुकमरान सिंध खे टुकड़ा करे वसीलनि ते कब्ज़ो करण चाहिनि था। केसर बंगाली चयो त सिंध खे इस्लामाबाद सां थींदड़ माहिरनि ते अखियूं खोलण घुर्जनि। आमिर नवाज़ भड़ायत चयो त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहिद आहिनि। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त पीसीबी चेयरमैन मुल्क खे क्रिकेट वांगुर समझी रहियो आहे। सूबनि खे विरहाइण जहिड़ा गैर संजीदा ऐं नवां तजुर्बा करण बदिरां मसइलनि जो हल ॻोल्हियो वञे। अब्दुल हसीब जमाली चयो त सिंध पाकिस्तान जे क़याम लाइ किरदार अदा कयो, जंहिंजो क़दुर करणु घुर्जे। बाबशर चयो त क़ौमी असेंबली खे बि सूबनि जे विरहाङे जो इख़्तियार नाहे, साज़िशनि जो ख़ात्मो आंदो वञे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली आसपास की आवाम लाइ

0: अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह नव खां साढा छह वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: छा तव्हां जोड़नि जी सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: उससे इस मामले में कोई बेहतरी नहीं आई. कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया है हमारी नजर में, और जिस तरह से वो मामले को ले है सिंध असेंबली में, मैं समझता हूं कि वो उनका एक पॉलिटिकल इकदाम था जिससे यकीनन उनको सियासी तौर पे जो है वो फायदा हुआ.
4: वफाकी हुकूमत नवन सूबन वाले मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराने जो इशारो दे छो. वजीर आजम के सियासी मामलन वाले सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त नवन सूबन के हवाले से फैसलो पार्लियामेंट कंदी. गडल पार्लियामेंट मंजूरी डिनी त उन खा पोई रेफरेंडम थिंदो. हुकूमत अकेले सिर इयो फैसलो नथी करे सके. मुस्लिम लीग नून समेत सभी पार्टियों पार्लियामेंट के फैसले के तस्लीम कंदियो. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउल्लाह जो चवण हो त इकोनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबन वाले बहस जो नतीजो न निकरंदो. अवाम नवा सूबा चाहे तो केर भी रोके न तो सके. पीपुल्स पार्टी सूबन वाले मामले ते जरूरत खां वधीक रद्दअमल डिनो आहे.

0: डिक्टेटर खे कालाबाग डैम न टाणे डिनो त सिंध जो ग्राहको कीअं थियण ॾींदासीं। सूबनि जूं ॻाल्हियूं करण बंदि कयो न त MRD जहिड़ी तहरीक शुरू थी वेंदी। PP सिंध जे सदर निसार कोड़े कैनशाह में MRD जे शहीदनि जी वर्सी खे तकरीब ख़िताब कंदे चयो त निसार कोड़ो चयो त कुझु माण्हू असांखे काक्रोच पिया चवनि, जेकॾहिं काक्रोच निकिता त अवां रही न सघंदा, सिंध जो ग्राहको कॾहिं बि मंज़ूर न आहे। सूबनि खे अख़्तियार ॾेई ख़ुदि मुख़्तार बणायो वञे, सिंध जो अवाम ग्राहको नथो चाहे।
1: MQM सिंध जे विरहाङे जो रिंगट बंदि न कयो। MQM पाकिस्तान जे चेयरमैन ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त सूबे जी विरहाङे खे गदारी करार ॾींदड़ सभ खां वॾी गदारी आहे। असांजा वॾा लॾ पॾाण करे क़ाइदे आज़म जे पाकिस्तान में आया हुआ। ख़बर न आहे कंहिं उन्हनि खे भुट्टो जे पाकिस्तान में धिके छॾियो। अॼु कराची जी आबादी 2 करोड़ खां वधीक आहे। समूरी मुल्क में आबादीअ जे हिसाब सां सूबा ठाहिण घुर्जनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त मौजूदा निज़ाम में मुल्क नथो हली सघे। हू कंहिं बि फोरम ते कंहिं बि वक़्तु सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। अवाम खे अख़्तियार ॾियणो पवंदो त जंहिंखे पसंदि न करे उनखे हटाए सघे।
2: चार महीनों से चल रहा है, आपने देखा होगा बजट इजलास में भी ये ड्रामा हुआ, तब से लेकर कहा गया है कि भाई इसको तोड़ेंगे, इनके लिए मौके वतन है, ये तो कोई जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जो खाया है, जो कब्जा किया है, कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें, ये आपके इस रेजुलेशन में तुम न करें कि जो आपने देश किया है जमीने वापस करें, तो हमारा लैंड वापस करें,

0: बदानियत के ऊपर आप बात करेंगे तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान की बदानियत को थ्रेट करेंगे।
1: सिंध जे क़ौम परस्तन वकीलन ऐं सोनावर्दन पारां सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशुनि खे नाकाम बणाइण जो वचन। सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम जे सेमिनार में सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। कराची में सेमिनार खे ख़िताबु कंदे श्री जैन शाह चयो त मुहिब वतन सिंधी कॾहिं बि सिंध तोड़ण न ॾींदा। अवां ठहराउ वारो ड्रामो करे करप्शन जो हिसाब किताब गुम नथा करे सघो। सूबनि जी घणी आमदनी वारियुनि शयुनि ते वफ़ाक़ कब्ज़ो करे वेठो आहे। कोर्ट सिंध खे वापसि कयो। पंजाब जे लखे एकड़ ज़मीन आबाद करण लाइ सिंध खे बंजर बणाइण जी साज़िश थी रही आहे। कराची बार एसोसिएशन जे सदर आमिर नवाज़ राय चयो त सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ सिंध जे अवाम ऐं वकील मुतहिद आहिनि। सिंध बार काउंसिल जे सदर अब्दुल असीफ़ जमाली चयो त सिंध पाकिस्तान जे क़याम लाइ किरदार अदा कयो जंहिंजो क़दुरु करणु घुर्जे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त मोहसिन नक़वी मुल्क खे बि क्रिकेट वांगुरु सम्झी रहियो आहे। सूबनि खे विरहाइण जहिड़ा गैर संजीदा ऐं नवां तजुर्बा करण बदिरां मसइलनि जो हल ॻोल्हियो वञे।
2: सिंध जे मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते ग़ौर वीचार लाइ सिंध असेंबलीअ जी 12 रुकनी ख़ासि कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। एम क्यू एम जमात इस्लामी ऐं पीटीआई तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो। कमेटी सरबराह ज़ियाउल हसन लंजार चयो त मकानी निज़ाम बाबति एम क्यू एम जो बिल नाहे आयो। असेंबलीअ जी इजाज़त सां ई उन ते ग़ौर कयो वेंदो। नओं चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतज़ाम हवाले थी वेंदा आहिनि। एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोज़ाने जा मामला ॾिसी सघंदो। एम क्यू एम जे तहा अहमद चयो त दांदली ऐं जाली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी कई पई वञे। जमात इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर सां इतफ़ाक़ नथा कनि। अहिड़ी तरमीम आई त अदालत जो दरवाज़ो खिड़कायो वेंदो। पीटीआई जे शबीर कुरैशी चयो त अण चूंडियल नुमाइंदनि खे यूसीए में विहारणु मुनासिब न आहे। अण धुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुक़रर कया वञनि।
3: We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called, and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
1: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि। जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि। रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। आमरी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन्स ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे। अपना हरमुस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे।

0: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
1: जी हा, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-878 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सासे दो। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि? त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 231-25-25-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।